0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York, South Asia's number one radio station. It's hot.
2: पहले मुझे लगता था ये बीमारी सिर्फ इंस्टाग्राम, टिकटॉक और शायद फेसबुक की है, बट देन आई रियलाइज दैट दिस बीमारी हैज इन्फिल्ट्रेटेड डेटिंग एप्स एज वेल. यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? ऑफ कोर्स यू डोंट. आई विल टेल यू. ये केक मर्डर क्या होता है? हाँ, आप सीधा सीधा अपना बर्थ डेट क्यों नहीं लिख सकते? दिस इज द डे आई वॉज बॉर्न टू मेक योर लाइफ मिजरेबल. ये भी चलेगा. केक मर्डर, देर इज नो सच थिंग इज केक मर्डर. आपके सिर्फ 3 फंक्शनल ब्रेन सेल्स हैं तभी आप ऐसी चीज लिख सकते हो. अदरवाइज इट इज जस्ट अ वे ऑफ अनोइंग समबडी एंड वेस्टिंग देयर टाइम. मतलब मैंने इतने सारे लोगों को डेटिंग ऐप पर ये लिखते हुए देखा ना, केक मर्डर ऑन 27th of February, एंड यू आर लाइक यार तुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था. 27th of February शुड नॉट एग्जिस्ट इन द कैलेंडर एट ऑल, बिकॉज यू आर सेइंग थिंग्स लाइक केक मर्डर. इतना बड़ा इंसान हो गया, स्कूल में नहीं है, चेंज कर ले प्रोफाइल पर, ये सब. यू साउंड लाइक अ कंप्लीट इडियट. दैट सेड, अगर आपको भी डेटिंग एप्स पर एक पर्टिकुलर पेट पीव है कि जहां ये देख लिया वहां मैंने लेफ्ट स्वाइप करना है, बिकॉज खून खोलता है ना आपका, व्हाई डोंट यू टेल मी अबाउट इट इंस्टा पर या एफबी पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. टेल मी व्हाट इज इट ऑन डेटिंग एप्स दैट रियली अपसेट्स यू, एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्च.

0: Milci.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieta la burga. Milci, burga.
2: हेलो,
3: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: बोल रहे
3: हैं राज जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया, कौन सा बोल रहे हैं?
3: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
2: लेकिन है किस लिए, ये तो बताइए, किस लिए, कहाँ पे लगाना
3: नहीं,
2: है?
3: नहीं, वही मैं, आप जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं, हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं, उसमें अब जाहिर सी बात है भाई, आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा। हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ।
2: पूरी
3: नहीं, नहीं, पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है,
2: तो बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ आप, चाहिए हमारे पास तो?
3: नहीं, आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना?
2: ये कॉपी मुझे भी भेजना
3: राज जी। एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
2: अपने फ्रेंड्स को, उनको भी भेजना।
3: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। आप थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहे तो?
2: हाँ बिल्कुल बताइए।
3: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वांटेड इस आदमी को, नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें। राज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा। मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया, आपका आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप, इसलिए
2: कुकड़ों को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: अपने रोके वाली रात पे तो रुक सकते थे ना आप, बट यू एंडेड अप मेकिंग आउट विद योर एक्स एंड गॉट कॉट. अब आपकी जिंदगी में क्या होगा?
3: द सीक्रेट बॉक्स.
2: वही होगा जो मंजूर है, योर डेस्टिनी होगा. बट इफ यू हैव अ सीक्रेट कन्फेशन टू मेक, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या एफपी पर, वी विल गेट टॉकिंग. मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
4: हेलो रोशी,
2: हाउ आर यू?
4: I'm good, how are you?
2: I am very good. और जब मैंने आपका confession पढ़ा, I was like, I need to talk to this girl. So what's your story, Morning Glory?
4: So मेरी एक college friend है, and वो थोड़ी सी एक intense character है. So उसका recently अभी breakup हो गया, क्योंकि उसके boyfriend ने उसपे cheat किया with her best friend.
2: Okay.
4: Of course उसको उसे सबक तो सिखाना ही था. So what she did is she took what is the most dearest thing to him. उसकी एक कार है जो उसके डैड की है. उसने उस गाड़ी के चारों टायर फ्लैट कर दिए. अब वो गाड़ी उसे अपनी सब गर्लफ्रेंड से ज्यादा प्यारी है. इतनी प्यारी कि उसके डैड ने उसकी जो झाड़ लगाई वो अलग, उसकी करंट गर्लफ्रेंड ने भी उसे छोड़ दिया. सो माई बेस्ट फ्रेंड वॉज वेरी सैटिस्फाइड.
2: बट टेल मी दिस, उसकी करंट गर्लफ्रेंड ने उसे इसलिए छोड़ दिया बिकॉज अब उसके पास गाड़ी नहीं थी?
4: हो सकता है, पॉसिबली.
2: This is so wicked. I think this roshification is for your friend and for you, क्योंकि आपने ये confession मेरे साथ share किया.
0: You've been roshified.
2: I hope your friend has recovered from this particular situation.
4: Oh, she has absolutely avenged herself.
2: I think that sounds amazing. But next time, I hope that she's not dating someone who paragliding karta ho, क्योंकि उसे गुस्सा आए और उसका parachute ऐसे flat कर दे. We don't want people dying, okay? But all the best to your friend. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसा कोई secret confession है, hit me up on Insta या FP. We will get talking. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. नाम की spelling है ROCHIE. So go ahead and do whatever you have to do. लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: साथ जीतू राज, only on Mirchi, it's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Then, Spider-Man, brand new day आ गई है, and for God's sake, please theater में जाकर ही देखो, is what जीतू राज will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा. And for God's sake, किसी से भी story मत सुनो, don't take any spoilers. फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी.
3: Spiders have three life cycles.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है, यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है, क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है, ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland, in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों, क्या, कैसे, वो जाकर देखो. Also, there's a particular scene between John Bernthal अर्थात Frank Castle aka Punisher and Tom Holland अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man brand new day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज के पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो, एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने. वो क्या है, ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड्स सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज.
0: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: भाई मेरे को genuinely लगा पहली बार कि वो kidnap हो गया है. So I met this guy on a dating app और वो इतना sweet था. He was a 10 on 10, not even kidding you. लेकिन उसकी एक छोटी सी problem थी. वो एक हफ्ता communicate करने के बाद 2-3 दिन तक गायब हो जाता था. भाई text facts का कोई जवाब नहीं, phone नहीं उठा रहा, you don't know where to reach him. पहली बार तो मुझे genuinely लगा कि वो kidnap हो गया है. Then जब ये उसकी आदत बन गई and when I finally reconnected with him, वो first time के बाद, he was like, कुछ नहीं यार, घर में बहुत भसर थी, बड़ा कलेश था, I couldn't have a conversation, I'm hoping you'll understand. I was like, हाँ ठीक है, कोई नहीं. उसके बाद when this became a pattern, I was like, एक second, मुझे नहीं पता है कि ये जो 2-3 दिन तू गायब हो जाता है, क्या करता है, स्मगलिंग करता है, तेरी डबल लाइफ है, तू कोई सीक्रेट स्पाई फॉर द कंट्री है, एंड आई डोंट इवन ऑनेस्टली केयर. यू आर जस्ट समबडी आई कैनॉट रिलाय ऑन. यू आर समवन हु मेक्स माई हार्ट गो क्रेजी थिंकिंग कि किस तरह का बंदा है, आता है जाता है, व्हाट्स अप विद दिस गाय. I think you're a wonderful person, a 10 on 10, but you're definitely not meant for me. और मैंने उसे okay टाटा bye bye कर दिया. लेकिन I have a feeling I'm not the only person जिसके साथ ऐसा होता है. और अगर आप भी एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ ऐसा हुआ है, you've actually ended up meeting this guy who mysteriously disappears every now and then, और उसके पास एक perfect excuse होता है every single time to tell you कि वो कहाँ गायब हुआ था, then I think we should totally compare notes. नहीं, and to do that, आप मुझे ढूंढ सकते हो Insta पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड एंड हिट मी अप डार्लिंग. प्रॉमिस आई विल नॉट डिसअपीयर ऑन यू. एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Tony,
1: Mirchi Roshi.
2: Only on Radio Mirchi New York, South Asia's number one radio station. It's hot.
3: रोशी आपने कहा है कि गिव लव अ चांस, बट आई हैव हैड 27 ब्रेकअप्स पिछले 24 सालों में, तो इसके बारे में क्या करना चाहिए?
1: रोशी के डीएम से
3: ये खूबसूरत सवाल मुझसे पूछा है गुलाम मुस्तफा ने। देखिए गुलाम मुस्तफा, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आई डू से गिव लव अ चांस, लेकिन आपके केस में ना हमें ये सोचना चाहिए कि ये रिलेशनशिप्स हैं। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स नहीं है कि हमने 24 इयर्स में 27 टाइम्स ब्रेकअप कर लिया। रोशी अब मैं क्या करूं? अब आपको करना ये है कि जब आप अगली बार एक रिलेशनशिप में जाओ ना, उसे रिलेशनशिप की तरह ट्रीट करना, ठीक है? इंस्टेंट नूडल्स की तरह नहीं कि करा खाया और फिर अगले नूडल्स की तरफ चल पड़े। मे बी दैट विल चेंज द वे यू लुक एट लव। और अगर आपकी भी जिंदगी में गुलाम मुस्तफा की तरह बहुत ही अनोखे सवाल हैं जो आप किसी और से नहीं पूछ सकते हो, मैं तभी तो आपकी जिंदगी में हूँ। I am your Broshi. The name is Mirchi Roshi. Naam ke spelling R-O-C-H-I-E. So hit me up on Insta ya FB and we'll get talking about whatever you do. Kahin mat jana, kyunki wapas to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi, it's hot.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: पहली बार प्यार हुआ है और अब दिमाग खराब हो गया है, क्या करूं इसके बारे में, जल्दी से मुझे फोन करो बिकॉज आई रियली नीड टू टॉक टू यू, इट्स एन SOS सिचुएशन. देवांग का ये मैसेज आया इंस्टा पर, आई टोटली हैव टू कॉल हिम. बट देवांग की तरह अगर आपकी भी जिंदगी में कोई भासड़ है, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB, वी विल गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ लाइन पर देवांग है. हेलो,
3: आपका शो 2-2.5 साल से सुन रहा हूं, इट्स वेरी गुड.
2: थैंक यू सो मच यार.
3: मेरे को है ना आपसे कुछ सजेशन चाहिए.
2: बोलो ना.
3: एंड सजेशन भी वो चाहिए जो मैं सुनना चाहता हूँ.
2: आई लाइक योर ऑनेस्टी. सजेशन भी वो चाहिए जो मैं सुनना चाहता हूँ.
3: मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है. मैं 32 साल का हूँ, आई एम अ लॉयर.
2: ओके,
3: ठीक है. सो मैं 15 घंटे बिजी रहता हूँ दिन में जनरली, एंड आई एम वेरी डेडिकेटेड कि भाई मुझे काम करना है लाइफ में और पैसा बनाना है, मेहनत करनी है. वंस आई टर्न 29 तो मेरे घर वाले shaadi.com से मेरे लड़कियां ढूंढ रहे थे, पर मैं 7-8 जगह गया, मेरी बनी नहीं किसी से बात. ठीक है, क्योंकि मैं हॉस्टल का बच्चा हूँ तो मुझे हॉस्टल वाले इंडिपेंडेंट लोग ज्यादा पसंद आ रहे. मैं बोला आपसे नहीं हो पाएगा, तो बोले तुम खुद करो ना, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम करते क्या. आई वेंट ऑन हिंज. वहां से एक डॉक्टर मुझे मिल गई, उन्होंने डेट करना शुरू किया. हम मिले, बहुत बढ़िया बातचीत चल रही है, सब चल रही है. वो बार बार बोलती थी तू मुझे गोश्त तो नहीं कर देगा, उसने नंबर देने के लिए बहुत नाटक किया, सब किया. एक बार मैंने उसे बोला भी था कि यार मैं तेरा हाथ पकड़ना चाहता हूँ, तो वो बोले अभी नहीं सही टाइम आएगा. तो वो बोली तू लाल पीला और शर्मा रहा है ना, क्योंकि मैं बचपन से जन्मजात सिंगल हूँ. मैंने कभी किसी को डेट, जन्मजात सिंगल. ठीक है, और मैं दारू भी बहुत लिमिटेड पीता हूँ. ऑफिस में कोई पार्टी में चला गया तो एक बियर पी ली, बाकी मुझे कभी वो, मतलब मेरे को क्लबिंग जाते हुए ये होता है कि साला पैसा भी मैं दूँ, नाचू भी मैं. मैं पैसा देके थोड़ी नाचूंगा लगा के. तो ये मेरी फैक्ट स्टोरी है. तो उसने मुझसे पूछा था यार तू कुछ पैसा ऐसा कमाता है कि तुम लोगों का भी डॉक्टरों की तरह स्ट्रगल चलता है. तो मैं बोले ये कोई भी सेकंड डेट पे पूछता है. तो फिर तो बोलती है कि यार देख अगर शादी करनी होगी ना तो मैं बोला ना, तू मम्मी को बोल दे 1 लाख रुपए महीना कमाता है. अब वो इतनी डेडिकेटेड बन रही थी कि वो मंडे खुद ऑफिस आ जाती थी कि तू अगर ऑफिस में है तो मैं आ रही हूँ. आती थी और 2-3 बार तो वो मेरे प्रोटीन बार गाड़ी में छुपा के चली गई कि यार तू भूखा रह जाता है, हाईकोर्ट में रह जाता है, तो ये खा लिया कर, डोंट स्किप लंच, डोंट स्किप डिनर. अब जिस बंदे को कभी बाप ने कुछ नहीं दिया इतने प्रेम से, उसको बंदी दे रही है सब. ठीक है, मुझे बोलती है यार लिसन 2 days back माई मॉम वॉज आस्किंग अबाउट यू. हाँ तो तूने क्या बोला. तो बोले चल रहा है बट आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम, फलाना डिमकाना. टाइम वेस्ट कहाँ हो रहा है. अब वो बोल रही है कि मुझे डॉक्टर से ही करनी है. बोले तू हाँ ये 15 डेटों के बाद हो रहा है रोशी. मैंने उसके लिए इतने कार्ड वार्ड. हाँ आप बोले मुझे डॉक्टर से ही करनी है. तो मेरी हो गई यार ये क्या बात हुई. और जब से मैंने केप्रिकॉन के बारे में पढ़ना शुरू किया कि केप्रिकॉन्स पहले लव को मना करते हैं, उनका पास में कुछ इन्हें काटा होता है, वो दिन में उतरती चली.
2: बट एक बात बताऊं, आई एम नॉट इवन सेइंग वुमेन, पीपल आर क्रेजी. ठीक है, तो गोस्टिंग कभी भी कहीं पे भी बिना बताए हो सकती है. ऑनेस्टी अच्छी पॉलिसी होती है, बट मैं कितने रिलेशनशिप्स में रह चुकी हूँ वेयर अनएक्सपेक्टेड.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, स्पेशली जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी विस्पर्स, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। एंड फॉर गॉड्स सेक किसी से भी स्टोरी मत सुनो, डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
1: स्पाइडर्स हैव थ्री लाइफ साइकल्स।
0: आई जस्ट कांट बिगिन टू टेल यू, आई विल टेल यू द बिगेस्ट थिंग। स्पाइडरमैन में विलन कौन है, यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है, क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है, ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये film पूरी तरह से Tom Holland के shoulders पर rest करती है। क्यों, क्या, कैसे, वो जाकर देखो। Also, there's a particular scene between John Bernthal अर्थात Frank Castle aka Punisher and Tom Holland अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड के फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज के पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने, वो क्या है। ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे, कई लोग पूछे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है। फॉर गॉड्स सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज।
2: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi, New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: अगर तुम एक इंडियन लड़की हो और इंडियन लड़के को पटाना चाहती हो, देन आई एम रियली सॉरी टू से दिस, इट्स वेरी स्टीरियोटिपिकल, लेकिन आपको एक साड़ी पहनकर ही जाना चाहिए अपनी डेट के लिए, बिकॉज दैट इज श्योरली गोइंग टू टर्न ऑन योर पोटेंशियल बॉयफ्रेंड. ऑफिस में मैंने जितने भी लड़के थे, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक ऑलमोस्ट 100-150 लड़के, लाइन में खड़ा होकर उनसे पूछा है कि अगर आपके पास एक ऑप्शन हो कि आपकी बंदी कोई भी तरह के कपड़े पहनकर आ सकती है, इट कुड बी अ गाउन, इट कुड बी अ शॉर्ट स्कर्ट, इट कुड बी शॉर्ट साड़ी लहंगा, क्या पहनकर आए, तो आपको बहुत खुशी होगी. और मतलब सबके सब 100% रिस्पॉन्स वॉज साड़ी, ऑब्वियो साड़ी, ऑब्वियो साड़ी. एंड आई एम थिंकिंग टू माई सेल्फ कि यहाँ हम इतनी मेहनतें कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऐसे चोचले कर रहे हैं कि ये कलर पहनो और वो प्रैक्टिस करके जाओ, और ऐसे कालीदार लाल कपड़े में बांध के इंस्टा पे जो भी अजीबो गरीब स्टोरीज आ रही है जो हम सब फॉलो करते हैं, ऑल यू रियली हैव टू डू इज वेयर अ साड़ी. इट वॉज रियली दैट सिंपल. एंड ऑल यू पीपल जिन्हें लगता है कि वो 2 मिनट में साड़ी पहन सकते हैं, एक तो क्या आप सीरियसली एग्जिस्ट करते हो, आप एक मिथिकल क्रीचर नहीं हो, और दूसरा ये कैसे करते हैं कि 2 मिनट में आप साड़ी ड्रेप कर लेते हो? क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं जब साड़ी पहनती हूँ ऐसा लगता है मैं गमछा पहन कर आ गई हूँ. प्लीज हेल्प मी आउट एज वेल, मैं भी लोगों को इम्प्रेस करना चाहती हूँ. एंड हेल्प मी विद दिस, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड, हिट मी अप, हेल्प मी आउट, एंड व्हाट एवर यू डू, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: दाढ़ी पे जो हाथ फेरे सारी दुनिया हिले।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: एक रोमांटिक ड्राइव क्या फिर भी रोमांटिक है अगर उसमें 7 गालियां पर मिनट की एवरेज है. सो मेरा भाई, आई ट्राई टू फाइंड हिम अ डेट ऑन एन ऑनलाइन डेटिंग ऐप और वो पहली बार इस लड़की को मिलने गया. शी सेड कि यार बारिश हो रही है, ड्राइव पर चलते हैं. तो मेरे भाई को ड्राइव करने का कोई शौक नहीं है, बट ही डजंट माइंड बींग अ पैसेंजर प्रिंसेस. साथ में बैठा हुआ है, एक घंटे बाद घर की घंटी बजती है, वो अंदर आता है एंड ही इज लाइक, यार उस बंदी ने ड्राइव करते हुए, और वो इतनी खराब ड्राइवर थी, लेकिन दुनिया भर के आसपास के लोगों को इतनी गालियां दी हैं दैट आई हैव कम बैक. मेरे दिल में 0% प्यार और 100% दिमाग में माइग्रेन लेकर. एंड आई वॉज लाइक, दैट डज नॉट साउंड लाइक अ वेरी रोमांटिक ड्राइव. ही वॉज लाइक, तू जब भी कुछ ऑर्गेनाइज करती है ना, इसी तरह का वाहियात एंडिंग होता है उसका. एंड आई वॉज लाइक, हाँ ठीक है, मैं नहीं ढूंढूंगी तेरे लिए लड़की, अब ढूंढ अपने लिए खुद. बट द ट्रूथ इज कि एक रोमांटिक ड्राइव को ख़राब करने के 100 तरीके होते हैं. गालियाँ देना इज जस्ट वन ऑफ दम. अगर आप भी ऐसे किसी, वेल इट सीम रोमांटिक एट फर्स्ट बट एंडेड अप बीइंग वेरी वेरी अनरोमांटिक ड्राइव पर गए हो, देन व्हाई डोंट यू शेयर योर स्टोरी विद मी मॉर्निंग ग्लोरी. और वो करने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York, South Asia's number one radio station. It's hot.
2: अपने रोके वाली रात पे तो रुक सकते थे ना आप, बट यू एंडेड अप मेकिंग आउट विद योर एक्स एंड गॉट कॉट. अब आपकी जिंदगी में क्या होगा?
3: द सीक्रेट बॉक्स.
2: वही होगा जो मंजूर है, योर डेस्टिनी होगा. बट इफ यू हैव अ सीक्रेट कन्फेशन टू मेक, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या एफपी पर. वी विल गेट टॉकिंग. मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
4: हेलो रोशी,
2: हाउ आर यू?
4: I'm good, how are you?
2: I am very good. और जब मैंने आपका confession पढ़ा, I was like, I need to talk to this girl. So what's your story, Morning Glory?
4: So मेरी एक college friend है, and वो थोड़ी सी एक intense character है. So उसका recently अभी breakup हो गया, क्योंकि उसके boyfriend ने उस पर cheat किया with her best friend.
2: Okay.
4: Of course उसको उसे सबक तो सिखाना ही था. So what she did is she took what is the most dearest thing to him. उसकी एक कार है जो उसके डैड की है. उसने उस गाड़ी के चारों टायर फ्लैट कर दिए. अब वो गाड़ी उसे अपनी सब गर्लफ्रेंड से ज्यादा प्यारी है. इतनी प्यारी कि उसके डैड ने उसकी जो झाड़ लगाई वो अलग, उसकी करंट गर्लफ्रेंड ने भी उसे छोड़ दिया. सो माय बेस्ट फ्रेंड वाज वेरी सैटिस्फाइड.
2: बट टेल मी दिस, उसकी करंट गर्लफ्रेंड ने उसे इसलिए छोड़ दिया बिकॉज अब उसके पास गाड़ी नहीं थी?
4: हो सकता है, पॉसिबली.
2: दिस इज सो विकेड. आई थिंक दिस रोशिफिकेशन इज फॉर योर फ्रेंड एंड फॉर यू, क्योंकि आपने

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट
1: मिर्ची।
2: रोशी रोशी
1: मिर्ची रोशी,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: में गाओ है रेला ऊंचा पाओ यू पटका है ये देसी घमेला कैसा रहा यका यकी नाचो नाचो नाचो नाचो
1: अरे धूम धूम थिरके जा पाओ में जान जगा धुमक धुमक नाचे जा दुनिया हिला दे सारी नाचो नाचो नाचो

0: साथ जीतू राज, only on मिर्ची, it's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man Brand New Day आ गई है and for God's sake, please थिएटर में जाकर ही देखो is what जीतू राज will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, especially जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा. एंड फॉर गॉड से किसी से भी स्टोरी मत सुनो, डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स. फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी.
3: Spiders have free life cycle.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है, यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है, क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है, ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों, क्या, कैसे, वो जाकर देखो. Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर, अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्म नहीं देखी है तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ओह, आल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माय रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने. वो क्या है, ओके आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज.
0: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

कोई भी रोमांटिक सी फिल्म देख लो, स्पेशली जब आपको लग रहा है कि यार जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा, क्या मुझे कभी कोई मिलेगा या नहीं, शायद रोमांस मेरे लिए नहीं है, जितने भी ये सारे क्वेश्चंस होते हैं ना विच ब्रिंग यू डाउन, एंड ये सिर्फ औरतों के साथ नहीं होता है, मेन फेस इट एज वेल. जब हमारे को क्राइसिस होता है ना रोमांस के सिनारियों में, देन मेरे लिए द वन थिंग दैट ऑलवेज वर्क्स इज या तो मैं कोई रोमांटिक नॉवल पढ़ लेती हूँ या मैं कोई रोमांटिक फिल्म देख लेती हूँ. यहाँ तक कि मैं प्रेम की दीवानी हूँ, मैंने प्यार किया, हम साथ साथ हैं, ऑल ऑफ दैट, इट काइंड ऑफ हेल्प्स मी फिगर आउट कि हाँ देर इज लव इन दिस वर्ल्ड. सिर्फ अभी शायद मेरा वक्त नहीं है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे हिस्से में प्यार नहीं है. एंड समटाइम्स दैट्स ऑल यू नीड टू नो अबाउट लाइफ. और अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो अभी करंटली इस दौर से गुजर रहा है और आपको लगता है दैट मे बी लव इज नॉट फॉर यू, लेट मी टेल यू, लव इज फॉर एवरीबडी. सिर्फ ऐसा है कि शायद अभी आपका वक्त नहीं है, और अगर ये वक्त आपसे गुजारे नहीं गुजरता, देन वाई डोंट यू हिट मी अप. And जब तक you meet the perfect someone, we can have a conversation. मेरा नाम है मिर्ची रोशी.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Jeeturaj. Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Oh, okay then. Spider-Man brand new day aa gayi hai. And for God's sake, please theater mein jaakar hi dekho is what Jeeturaj will tell you. Kyunki is film mein kahin chhoti-chhoti aisi cheeze hain. Especially jab characters aapas mein baat karte hain, to unki whispers, unka pyar, unka ghussa, wo theater mein jo maza deta hai, wo kahin bhi nahi dega. And for God's sake, kisi se bhi story mat suno. Don't take any spoilers. Film mein kahin aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi.
3: Spiders have three life cycles.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो. Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो हैं वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म. तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से Jeeturaj टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ओह आल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माय रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची Jeeturaj, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं Jeeturaj ने. वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची Jeeturaj. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, रेकमेंडेड बाय Jeeturaj विद फोर मिर्चीज.
0: Jeeturaj, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

अच्छा, दिलीप साहब हो, राज कपूर साहब हो, या फिर हो देव आनंद, ये तीनों ऐसे दिग्गज स्टार्स थे जिन्होंने जम करके ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स की, बिकॉज ऑफ कोर्स जब इन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा तो इंडियन सिनेमा बस स्टार्ट ही हुआ था. लेकिन दीज थ्री पीपल वर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट जब कलर की बात हुई. जब कलर आने लगा इंडस्ट्री में और कलर एक्सपेंसिव भी बहुत था, तो फिर एक ना ट्रेंड चला था, क्योंकि इट वॉज सो एक्सपेंसिव. तो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स ऐसा करते थे कि किसी इम्पॉर्टेंट फिल्म का इम्पॉर्टेंट सीन या फिर उसका इम्पॉर्टेंट गाना जो था ना, वो कलर में कर देते थे. अब ऐसे में दिलीप साहब, देवानंद और राज कपूर साहब ने ना पूरी इंडस्ट्री को चेंज करने की ठान ली थी. सो दे डिसाइडेड कि वो बहुत सारी फिल्मों को मना करेंगे और जो फिल्में कलर में होंगी उनको करना शुरू करेंगे. अब ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से ये हुआ कि ज़्यादातर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स फिर कोशिश करने लगे थे कि वो कलर में पिक्चरें बनाए. वेल, आज जिस फिल्म की बात होगी वो देव साहब की पहली कलर फिल्म थी. Which film am I going to talk about? ये अभी आपको पता चल जाएगा. बस कुछ गानों के उस पार, मैं हूँ श्रेया, only on पुरानी जीन्स.

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मूवी का नाम है गाइड, जो कि देव साहब की पहली मूवी थी इन कलर। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और मैं बात कर रही थी कि कैसे देव साहब, राज कपूर साहब और दिलीप साहब ने ठान लिया था कि वो भाई कलर को लेकर के आएंगे इन द इंडस्ट्री, बिकॉज एट दैट टाइम कलर बहुत एक्सपेंसिव था। सो इसीलिए ज़्यादातर पिक्चरों का इम्पोर्टेंट सीन या फिर इम्पोर्टेंट अगर कोई गाना होता है, इम्पोर्टेंट सीक्वेंस होता है, उसको कलर में कर दिया जाता था। बट दीज थ्री लेजेंड्स डिसाइडेड कि भाई अगर इम्पोर्टेंट पिक्चर भी होगी तब भी वो नहीं करेंगे अगर वो ब्लैक एंड व्हाइट में है। इस चक्कर में ज्यादातर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को ना अगर ये तीन अपनी फिल्म में चाहिए थे तो वो पिक्चरों को कलर करने लगे। तो आज बात हो रही है देव साहब की पहली फिल्म विच वॉज इन कलर, एंड दैट वॉज नन अदर देन हिज ओन फिल्म गाइड। सो गाइड की ना बड़ी मजेदार बातें हैं और कुछ ऐसी इमोशनल बातें हैं ना जो आपके दिल को छू लेंगी, जैसे कि अभी नहीं बताऊंगी, गाने के साथ बताऊंगी। सो कम राइट बैक, मैं हूं श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

Radio Mirchi, New York. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

गाइड फिल्म जब देव साहब बना रहे थे ना, तो ये उनके लिए बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल फिल्म थी. सो नंबर वन, ये उनकी पहली कलर फिल्म थी. एंड दूसरी, इस फिल्म में ही वांटेड एवरीथिंग परफेक्ट, ही वांटेड एवरीथिंग करेक्ट, और इसीलिए उन्होंने अपने फेवरेट कंपोजर एस डी बर्मन साहब को लिया था. अब हुआ ये कि दादा एक्चुअली में उस समय काफी बीमार पड़ गए टू द एक्सटेंट कि उन्होंने खुद देव साहब से कहा कि भाई बहुत टाइम लग रहा है उनको गाने बनाने में और पता नहीं वो कब ठीक हो पाएंगे. तो इसलिए दादा ने उनको रेकमेंड किया कि क्यों ना वो कोई और म्यूजिक कंपोजर को हायर कर लें. लेकिन आपको पता है, देव साहब ने इस बात को एकदम खारिज कर दिया. ही वॉन्टेड कि गाइड फिल्म के जो डेप्थ वाले गाने हैं वो सिर्फ और सिर्फ एस डी बर्मन बनाए. जब एस डी बर्मन साहब ठीक ठाक होकर के 6 महीने के बाद वापस लौटे, तो पता है उन्होंने कौन सा गाना सबसे पहले बनाया? अभी बताऊंगी. वापस आओ श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जिंग्स.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची
1: पर उसको साथ जीतू राज, only on मिर्ची, it's hot।
2: Hi, my name is Peter Parker.
3: Okay then, Spider-Man Brand New Day आ गई है and for God's sake please थिएटर में जाकर ही देखो is what जीतू राज will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। एंड फॉर गॉड से किसी से भी स्टोरी मत सुनो, डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
4: Spiders have three life cycles.
3: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात जेकब बैटनो, also MJ अर्थात जेंडाया and Peter Parker यानी टॉम हॉलैंड, in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है। क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो। Also, there's a particular scene between John Bernthal अर्थात Frank Castle aka Punisher and Tom Holland अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर, अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने। वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है। फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज।
1: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और आज बात हो रही है गाइड की, देव आनंद की पहली कलर फिल्म की। सो आई वाज टेलिंग यू कि कैसे देव साहब ने 6 महीने तक वेट किया था कि दादा यानी एसटी बर्मन साहब ठीक होकर के वापस सेट पे आ जाएं और रिकॉर्डिंग में लग जाएं। एक्चुअली व्हाट हैपेंड वाज कि एसटी बर्मन उस दौरान काफ़ी बीमार पड़ गए थे, इतने बीमार पड़ गए थे कि उन्होंने देव साहब को ये तक रेकमेंड किया था दैट ही कैन गो अहेड विद सम अदर म्यूजिशियन। लेकिन देव साहब को दादा बहुत पसंद थे और उनको पता था कि उन्हीं का म्यूजिक ना इस फिल्म में 4 चांद लगा सकता है। तो जब दादा वापस आए ठीक होकर के, जो पहला गाना उन्होंने बनाया वो पता है कौन सा था? वो था ये गाना जो मैं अब आपको सुनाने वाली हूँ। और ये गाना ना पता है कैसे शूट हुआ है? ये चित्तौड़गढ़ के फोर्ट पे शूट हुआ था और हीरोइन जो है वहीदा रहमान, वो अपने आप को शीशे में देख रही है। ऐसे विजन दिया गया है, उसी शीशे को रखा गया है कहते हैं, जिस शीशे में क्वीन पद्मिनी को अलाउद्दीन खिलजी ने देखा था उस चित्तौड़गढ़ के फोर्ट पे। यही गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू। मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा, देवानंद और उनके भाई विजय आनंद ने पहले, पता है, हसरत जयपुरी साहब को अप्रोच किया था। उनको लगा था कि इस फिल्म के गाने हसरत साहब से लिखवाते हैं। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और आज गाइड फिल्म की बात हो रही है, द एवरग्रीन हिट फिल्म। ऑफकोर्स इट इज गाइड, देव साहब की पहली कलर फिल्म भी थी बाय द वे। सो जब म्यूजिक टीम बना रहे थे ना, देवानंद एंड उनके भाई विजय आनंद, तो उन्होंने ऑफकोर्स एस डी बर्मन साहब को तो लिया ही था, लेकिन एज अ लिरिसिस्ट दे फर्स्ट वेंट टू हसरत जयपुरी। हसरत साहब के गाने कुछ उन दोनों भाइयों को ना पसंद नहीं आए, मतलब उनको लगा कि शायद गाने थोड़े हल्के हैं। तो देन दे टर्न्ड टू शैलेंद्र जी। अब शैलेंद्र जी को ये तो पता चल गया था कि वो दोनों की दूसरी चॉइस बने। इस बात ने शैलेंद्र जी को काफी हर्ट किया था। फिर आगे क्या हुआ, मजेदार सी कहानी है। वापस आओ श्रेया के साथ, देन आई विल लेट यू नो, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

शैलेंद्र जी इस बात से नाराज कम हर्ट ज्यादा थे। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ और आज गाइड फिल्म की बात हो रही है। वेल, द फर्स्ट फिल्म ऑफ देवानंद जो कि कलर में थी। अब इस फिल्म के लिए, क्योंकि विजय आनंद और देवानंद दोनों भाई मिलके ये फिल्म बना रहे थे, उन्होंने ना जो म्यूजिक टीम रखी वो पहले थी SD बर्मन साहब एंड लिरिसिस्ट के तौर पे हसरत जयपुरी। हसरत साहब के लिरिक्स दोनों भाइयों को कुछ खास पसंद नहीं आए और देव साहब अपनी फिल्म के म्यूजिक के लिए एक्सट्रीमली कंसर्न रहते थे, बिकॉज ही थॉट कि फिल्म का म्यूजिक बहुत काम आता है फिल्म की पॉपुलैरिटी में। तो फिर दे टर्न्ड टुवर्ड्स शैलेंद्र जी। अब शैलेंद्र जी को बाय वर्ड ऑफ माउथ ये तो पता चल गया था कि पहले दोनों भाई गए थे हसरत साहब के पास। इस बात से वो इतने दुखी हुए कि वो फर्स्ट चॉइस नहीं बने दोनों आनंद ब्रदर्स की, कि जब विजय आनंद और देव साहब उनके पास ये फिल्म लेके पहुंचे तो शैलेंद्र जी ने एक ऐसा अमाउंट कोट किया जो पहले कभी किसी लिरिसिस्ट ने नहीं मांगा था। ही थॉट, बिकॉज वो कहते हैं ना, वो ईगो क्लैश हो गया कि भाई अब मैं इतना पैसा मांगूंगा कि ये लोग अपना समूह लेकर के वापस लौट जाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है क्या हुआ? देव साहब और विजय आनंद मान गए और पहला गाना, इस मीटिंग के बाद जो पहले गाने का मुखड़ा लेकर के ये दोनों ब्रदर्स वापस गए थे, वाज सो हैप्पी, वो कौन सा गाना था बताऊंगी आपको। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: और इससे पहले कि विजय आनंद और देवानंद उस मीटिंग से बाहर निकलते, तब तक उनको इस गाने का मुखड़ा मिल चुका था।
1: गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी
0: पुरानी जीन्स पे आफू श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइड। तो मैं बता रही थी कि कैसे ना देव साहब और विजय आनंद को हसरत जयपुरी साहब के लिरिक्स उस समय बिल्कुल नहीं अच्छे लगे थे फॉर दिस फिल्म। तो देन उनको याद आया कि शैलेंद्र जी के पास चलते हैं। शैलेंद्र जी को ऑलरेडी पता चल चुका था ये बात कि भाई सबसे पहली चॉइस उनकी हसरत जयपुरी थे। तो शैलेंद्र जी ने ना, बिकॉज ही वॉज सो हर्ट कि वो इन दोनों भाइयों की सेकेंड चॉइस बने, उन्होंने ढेर सारा पैसा कोट कर दिया। भाई ईगो तो बीच में आएगा ही, बिकॉज दिल से उनको दुख लगा था। तो ही नेवर थॉट, शैलेंद्र जी को ये बिल्कुल भी नहीं लगा था कि विजय आनंद और देवानंद इतने सारे पैसे उनको देने के लिए मान जाएंगे। जब दोनों मान गए तो उस मीटिंग से निकलने से पहले ये गाने का मुखड़ा शैलेंद्र जी उनको दे चुके थे। यही गाना फ्रॉम द फिल्म गाइड कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूं श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची साथ जीतू राज, only on Mirchi, it's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man Brand New Day आ गई है, and for God's sake, please theater में जाकर ही देखो, is what Jeetu Raj will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी-छोटी ऐसी चीजें हैं, especially जब characters आपस में बात करते हैं, तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो theater में जो मजा देता है, वो कहीं भी नहीं देगा, and for God's sake, किसी से भी story मत सुनो, don't take any spoilers, फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी।
3: Spiders have free life cycle.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में एक पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man Brand New Day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film it's a little different. In fact I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है। क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो। Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने। वो क्या है? ओके आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है। फॉर गॉड्स सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज।
0: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ।

अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो पहली कौन सी इंडियन फिल्म थी टू गेट इनविटेशन फॉर कांस फिल्म फेस्टिवल, तो क्या आपको पता होगा? नहीं पता ना, मैं बताती हूँ। इट वॉज नन अदर देन देव साहब की फिल्म गाइड। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, एंड इट वॉज द फर्स्ट इंडियन फिल्म एवर टू बी इन्वाइटेड बाई द कांस फिल्म फेस्टिवल कमिटी। और कांस क्लासिक में इस फिल्म को, यू नो, अ सेक्शन ऑफ द फिल्म को दिखाया भी गया था। देवानंद एक्चुअली वॉक द रेड कार्पेट फॉर दिस इवेंट, और वो भी, यू नो, उनके साथ कौन थे? इंडियन एम्बेसडर उस टाइम के टू फ्रांस। सो इट वॉज huge thing and a lot of television channels and a lot of television channels तो नहीं होते थे, मतलब दूरदर्शन और सबने ना, न्यूज ने, सब ने इस बात को कवर किया था। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, आज ना देव साहब की फिल्म गाइड, जो कि उनकी पहली कलर फिल्म भी थी, बस उसी की बातें चल रही हैं, उसी के गाने हो रहे हैं, और आप और मैं मिल करके रिलैक्स कर रहे हैं। सो डोंट यू गो एनीवेयर।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

सिर्फ ऐसे गाने के लिए आरडी बर्मन साहब ने इनको कन्विंस किया था कि बस एक बार तबला बजा दीजिए. एंड दिस रिमेन्स द ओनली सॉन्ग इन इंडियन हिंदी सिनेमा जहां पर इन्होंने तबला बजाया. पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ पंडित शिव कुमार शर्मा, उन्होंने इस गाने में गाइड फिल्म के गाने में तबला बजाया. सो एट दैट टाइम उन्होंने तबला छोड़ दिया था बिकॉज ही वॉज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन संतूर. लेकिन आर टी बर्मन साहब पंचमदा उनके घर गए और उनको घंटों समझाया कि बस एक ही गाने पे आपका तबला हो जाए, अदरवाइज गाना अधूरा रहेगा. वेल, वो कौन सा गाना है? सैया बेईमान फ्रॉम द फिल्म गाइड. एस डी बर्मन साहब की धुन है, शैलेंद्र जी के लिरिक्स हैं, लता जी की आवाज है और तबला बाय पंडित शिव कुमार शर्मा. अब नेक्स्ट मैं हूं श्रेया ऑन पुरानी जीन्स.

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

जब विजय आनंद और देव आनंद साहब ने ऑथर आर के नारायण से बात की तो उन्हें पता चला द गाइड जो उन्होंने किताब लिखी थी वो एक्चुअली में रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड थी। सो आर के नारायण ने उनको बताया कि द प्लॉट ऑफ द नॉवल वॉज एक्चुअली डिराइव फ्रॉम द आउटब्रेक एंड अ ड्रॉट प्रॉब्लम दैट टुक प्लेस उनके खुद के होम टाउन में जो कि मैसूर में था। सो वहाँ पे एक महीने तक करीब पानी नहीं बरसा था और लोगों को प्यास के मारे बहुत बुरा हाल हो रहा था। एंड देन ही सेड कि एक्चुअली में ये हुआ था कि म्यूनिसिपल काउंसिल ने डिसाइड किया था कि वो ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे और इसलिए अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि बहुत सारी प्रार्थनाएं और रिचुअल्स कर रहे थे वो रिवर कावेरी के बैंक पे जा कर के बैठे और वहाँ पे जब उन्होंने प्रेस की तो 12th डे इट एक्चुअली रेन्ड। इसी एक बात को द गाइड बुक से उठा करके इसमें लव स्टोरी को थोड़ा पिरो करके इन दोनों ब्रदर्स ने, द आनंद ब्रदर्स, विजय आनंद एंड देव आनंद ने द गाइड में पेश किया। लेकिन आपको क्या लगता है, ये फिल्म चली थी? वेल अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: only on Radio Mirchi, New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

ऑलमोस्ट पूरी इंडस्ट्री इनवाइटेड थी फॉर द प्रीमियर ऑफ दिस फिल्म, लेकिन किसी ने भी आकर के ना विजय आनंद को मूवी देखने के बाद कंग्रेचुलेट नहीं किया. इट लेफ्ट हिम हार्ट ब्रोकन. पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ. लोग ना डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि विजय आनंद और देवानंद ने इतनी ऑफ बीट फिल्म बनाई है, और उस टाइम पे लोगों को ना इस फिल्म का क्लाइमैक्स नहीं समझ में आ रहा था. पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइड. वेल, कहते हैं कि जब ये मूवी थिएटर में खुली तो बहुत ही, मतलब जब खुली थी तब तो भाई बहुत अच्छा बॉक्स ऑफिस पे रिस्पॉन्स था, पर धीरे धीरे ऑडियंस कम होने लगी. बट आफ्टर अ वीक इस फिल्म की ऑडियंस फिर बढ़ने लगी एंड देन इट वेंट ऑन टू बिकम ऑफिशियल एंट्री फॉर द ऑस्कर्स एंड इट वन 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स. ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट मूवी गाइड. पुरानी जीन्स पे मैं हूं श्रेया. कम बैक राइट हियर.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची साथ जीतू राज, only on मिर्ची, it's hot।
1: Hi, my name is Peter Parker।
2: Okay then, Spider-Man Brand New Day आ गई है, and for God's sake, please theater

0: मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। एंड फॉर गॉड से किसी से भी स्टोरी मत सुनो, डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
1: स्पाइडर्स हैव थ्री लाइफ साइकल्स।
0: आई जस्ट कांट बिगिन टू टेल यू, आई विल टेल यू द बिगेस्ट थिंग। स्पाइडरमैन में विलन कौन है, यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है, क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है, ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू हु इट इज। ऑल्सो तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि बिकॉज इट्स स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एंड स्पाइडरमैन रेस्ट्स ऑन द शोल्डर्स ऑफ नेड अर्थात जेक बैटनो, ऑल्सो एमजे अर्थात जेंडाया एंड पीटर पार्कर यानी टॉम हॉलैंड। इन दिस फिल्म इट्स अ लिटिल डिफरेंट। इन फैक्ट आई कैन गो अहेड एंड टेल यू कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है। क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो। ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर, अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है जीतूराज ने, वो क्या है। ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है। फॉर गॉड्स सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज।
2: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
4: हिट गाना।

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ एंड इट्स टाइम फॉर मी टू गो. लेकिन जाने से पहले आपको तो पता ही है कि गड्डी में बैठना होता है और दूर हाईवे तक मेरे साथ जाना होता है. और आज का मेरा हाईवे हिट ना उन लोगों पे है जो खुशी में बहुत खुश हो जाते हैं और गम में ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं. सो मेरी मम्मी हमेशा एक बहुत अच्छी बात कहती हैं कि बहुत खुशी आपके दिमाग पे नहीं चढ़नी चाहिए और दुख आपके दिल पे नहीं चढ़ना चाहिए, बिकॉज ये तो जीवन है.
1: यही है
0: रंग रूप, थोड़े गम है थोड़ी खुशियाँ. On that note, this is Shreya signing off. I'll see you tomorrow.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब
3: मिर्ची का।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतूराज only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Oh, Kaden, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what जीतूराज will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers उनका प्यार उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: spiders have three life cycles
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batchno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो हैं, वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओह ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माय

0: इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज.
1: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बंटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और होश

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाय माय नेम इज पीटर पार्कर।
2: ओके देन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ गई है एंड फॉर गॉड्स सेक प्लीज थिएटर में जाकर ही देखो इज व्हाट जीतू राज विल टेल यू, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, स्पेशली जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी विस्पर्स, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। एंड फॉर गॉड्स सेक किसी से भी स्टोरी मत सुनो, डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
3: स्पाइडर्स हैव फ्री लाइफ साइकिल।
2: आई जस्ट कांट बिगिन टू टेल यू। I'll tell you the biggest thing, Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है, क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland, in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है। क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो। Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, aka Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने। वो क्या है? ओके आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है। फॉर गॉड्स सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे।

0: समय बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: रिचुअल्स सिर्फ रस्में नहीं, वो आदतें हैं जो कामयाबी का रास्ता बनाती हैं। आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो कई बार ना बहुत लोग कहते हैं डिसिप्लिन कैसे लाएं अपनी ज़िंदगी में, बड़ा मुश्किल होता है। तो ये चीज़ भी याद दिलाना बहुत ज़रूरी कि अगर आपने ये तय कर लिया कि 3 दिन की फास्टिंग करनी है या नवरात्रों में 9 दिन के लिए करना है या यू नो रोज़े रखने हैं मुझे 30 दिन 40 दिन के लिए, या लेंट का सीज़न है कि मैं 1 महीने के लिए कुछ छोड़ रहा हूँ, ये भी बहुत खूबसूरत तरीका है डिसिप्लिन बनाने का। कई बार लोगों को लोग ये ओवरलुक कर देते हैं कि मैंने साल में या महीने में 1 दिन फास्टिंग की, ये भी डिसिप्लिन बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है।
4: स्पिरिचुअलिटी में ये रिचुअल्स होते ही इसीलिए। रिचुअल्स किस लिए होते हैं? रिचुअल्स एक रिमाइंडर का काम करते हैं। वो रिमाइंडर क्या होता है? अच्छा, आप 9 दिन ये करके देखो, लेकिन आप करो उसको अपनी खुशी से, मजबूरी से नहीं करो, करने के लिए नहीं करो। फिर जब आप वो करते हैं तो आपको उसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा। जैसे अगर आप देखेंगे ना, थोड़े दिन के लिए भी अगर लोग सात्विक खाते हैं या फास्टिंग करते हैं तो कहेंगे बहुत अच्छा लगता है, बहुत हल्का लगता है, बहुत लाइट फील होता है, उनको बेनिफिट मिलते हैं। अब एक्चुअली जब आपको किसी चीज का बेनिफिट मिलता है तो आपको उसको क्या करना चाहिए?
3: और करना चाहिए।
4: पर हम कई बार क्या करते हैं,
3: अरे हो गया यार, फैशनेबल था, ठीक है अब अगले साल करेंगे,
4: पूरा हो गया। बस प्रॉब्लम ये है स्पिरिचुअलिटी के अंदर जो डिसिप्लिन होते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन क्या करता है, जैसे आपने पहले भी बहुत सुंदर लाइन कही थी, वो फ्रीडम दिलाता है। हमें लगता है कि डिसिप्लिन बंधन है, एक्चुअली डिसिप्लिन बंधन नहीं है। नियम मर्यादा, लोगों को तो ये शब्द ही नहीं आजकल अच्छे लगते,
3: लेकिन
4: कई सारे जो बंधन होते हैं ना, जैसे रक्षा बंधन हम कहते हैं, कई बॉन्डेज ऐसे होते हैं जो आपकी रक्षा करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका ये बंधन है, आपका नियम है, मैं 6:30 के बाद कुछ नहीं खाता। कई लोग करते हैं ना, खाने में भी आई विल नॉट ईट एनीथिंग आफ्टर 6:30। तो लोग कहेंगे क्या है, ऐसा कैसा डिसिप्लिन है, ऐसा थोड़ी ना। पर वो डिसिप्लिन उसको बेनिफिट करता है, उसको पता है कि वो हल्का रहता है, हेल्थ अच्छी रहती है, नींद बहुत अच्छी आती है, सुबह उठने में उसको बहुत कंफर्टेबल होता है। तो वो सारे बेनिफिट, तो उसके लिए वो बंधन नहीं है जो कर रहा है, उसको तो फ्रीडम फील होता है कि नहीं भाई, ये डिसिप्लिन बनाने से मुझे ये बेनिफिट है। देखने वाले को क्या लगता है,
3: क्या बंधन में जी रहे हो तुम?
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: डिसिप्लिन को दोस्त बना लेंगे तो सक्सेस का सफर आसान हो जाएगा। कैसे, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: और ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, हाल फिलहाल में मैं अपने रिश्तेदारों से मिलने कई दिनों बाद गया था, कई सालों बाद गया था, और मैं भी कोशिश करता हूँ 7:30 के बाद कुछ ना खाऊं। अब डिनर कर रहा था, मेरे चाचा जी आ गए, उनसे बहुत साल हो गया, ऐसा कैसे, ये क्या बकवास है, तुम शहरी लोगों का यही प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या समझते हो तुम अपने आप को, खाना तो पड़ेगा, जूस पिलाओ इसको, ये वाला चीज़ दिलाओ ये। अब मैं कह रहा हूँ मैं नहीं खा पाऊँ, सुबह से खा रहा हूँ, बट उनका जो प्यार है वो सारा खाने में उमड़ता है। तो ऐसे केस में क्या, सामने वाला बुरा मान रहा है, वो कहते हैं तुम्हें तो जाने नहीं दूंगा, मतलब लिटरली उन्होंने मेरे मुँह खोल के सामान उसके अंदर डाला है।
4: देखो, उसमें ऐसा होता है कि ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है कि वो उनका प्यार है, तो कभी कभी हम उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते, डिसरिगार्ड नहीं करना चाहते, हम थोड़ा बहुत अगर एक आध दिन थोड़ा सा लेते भी हैं। पहली बात तो रिस्पेक्ट जो होती है ना, वो नहीं होती कि हमें उनके अनुसार चलना है। फॉर एग्जाम्पल, वो आपको बहुत फोर्स कर रहे हैं, और तो भी अगर आपने नहीं कुछ लिया, लेकिन आप उनके फोर्स करने से बुरा नहीं माने, आप हर्ट नहीं हुए, आप अपसेट नहीं हुए, आपने भी प्यार से बात करी, आपने जरा सा एक टुकड़ा उनको कुछ करने के लिए ले भी लिया, आप वो रिश्ता बना सकते हैं।
3: सही बात है।
4: होता क्या है, वो फोर्स कर रहे होते हैं,
3: हम जाते
4: हर्ट
3: हैं।
4: हो जाते हैं, एक ईगो क्लैश होने लगता है, फिर उनको लगता है इन्होंने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया। अब हम सबके अकॉर्डिंग तो अपना जीवन नहीं जी सकते ना, ये हमारे जीवन के डिसिप्लिन है।
3: बहुत बढ़िया।
4: हर एक को अपने जीवन में कुछ डिसिप्लिन तो बनाने ही पड़ते हैं ना, वो डिसिप्लिन उनके लिए फ्रीडम का काम करते हैं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: थॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Discipline से दूरी, goal से दूरी है. आइए इस बात को समझते हैं.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
3: बिल्कुल, ये बिल्कुल मैं देखता हूँ और बहुत अच्छे से ये फॉलो करता हूँ. और कई बार क्या होता है कि वो आता ही नहीं आप तक, वो पहुँचने के पहले वो इंसान आप तक आएगा और बोलेगा अरे इसको बताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये तो सुनेगा ही नहीं. एक चीज आपने बंधन की बात कही तो उससे मेरे दिमाग में आया कि कभी कभी डिसिप्लिन जो होता है ना वो एक पनिशमेंट की तरह लगता है कि यार इतना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, मैं ये खा नहीं सकता, मुझे ये नहीं कर पा, मैं वो नहीं कर सकता एक्सेट्रा. और क्योंकि डिसिप्लिन में बहुत बार सैक्रिफाइस इन्वॉल्व होता है, वो पनिशमेंट की तरह लगता है. तो ऐसे केस में इसको, इसका नजरिया कैसे बदले हम?
4: पनिशमेंट वो ज्यादा देखने वाले को लगता है. जो कर नहीं रहा होता ना डिसिप्लिन, उसको लगता है ये तो बड़ा, जैसे कोई सुबह उठने की बात है या रोज जिम जाने की बात है या जो भी आपका डिसिप्लिन है, तो देखने वाले को वो बहुत मुश्किल लगता है. लेकिन करने वाले को, जैसे हमने पहले भी कहा कि उसको उस डिसिप्लिन से कुछ ना कुछ
3: फायदा मिलता है,
4: फायदा मिल रहा है, उसको नहीं पनिशमेंट लगता.
3: कई बार ऐसा भी होता है सिस्टर कि इतना कुछ करने के बाद भी जरूरी नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो. कभी कभी हम IIT की पढ़ाई कर रहे हैं, JEE के एंट्रेंस के कर रहे हैं, या फिर हम मेहनत कर रहे हैं वजन लूज करने के लिए, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए मेहनत कर रहे हैं, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, और सक्सेसफुल नहीं हुए. तब जो आसपास वाले लोग हैं जिनको पनिशमेंट लग रहा था, वो बोलते हैं अरे मैंने तो पहले ही कहा था, तुम क्यों कर रहे थे इतनी मेहनत. और कई बार होता है साइकिल रिपीट होता है, एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ. जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के जो एग्जाम है उनको बहुत टफ माना जाता है, तो कई बार लोग 4-5 बार 6-7 बार देते हैं और बहुत समय, बहुत साल भी इसमें निकाल देते हैं. तो उस समय ज़्यादातर आप पे आपके दोस्त वगैरह हावी हो जाते हैं या आपके रिलेटिव्स की, यार क्या तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, 4 साल निकल गए तुमने टाइम वेस्ट कर दिया. तो ऐसे केस में जब सामने वाले को आपने कहा उसकी नजर में पनिशमेंट है लेकिन आप भी नहीं क्रैक कर पा रहे, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें?
4: पर आपने ऐसे केसेस भी तो देखे हैं ना. हम ये वाला एग्जांपल तो पहले ले लेते हैं कि इतनी बार किया तो भी नहीं हुआ, पर हमारे पास वो एग्जांपल भी तो है ना कि जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ, सेकेंड नहीं हुआ, थर्ड नहीं हुआ, फोर्थ में हो गया. पर उनको भी तो उन लोगों ने कहा था ना, फर्स्ट में भी बोला होगा छोड़ दो, सेकंड में भी बोला होगा छोड़ दो, थर्ड में भी बोला होगा छोड़ दो, फोर्थ में हो जाता है तो सब वाह वाह करने लगते हैं. पर वो फोर्थ में क्यों हुआ? क्योंकि उस व्यक्ति ने छोड़ा नहीं, उसने गिव अप नहीं किया, उसने उसके ऊपर, ये जो हमने पहले भी कहा कि हार नहीं मानो आप. फेलियर इज, यू नो, इट्स नॉट अबाउट

0: फेलिंग, इट्स अबाउट नॉट गेटिंग अप. तो अगर आप उठ जाते हैं, आप फिर से ट्राई करते हैं, आप फिर सफल हो जाते हैं, जब सफल हो जाते हैं तब तो सब वाह वाह करते हैं, सब कहते हैं बहुत अच्छा हुआ आपने छोड़ा नहीं, आपने फिर से अटेम्प्ट दिया. फिर उन्हीं की कहानियाँ, उन्हीं की मोटिवेशनल स्टोरीज, उन्हीं के इंटरव्यूज हम सुनते हैं, फिर हम कहते हैं इनका चौथे अटेम्प्ट में जा करके क्लियर हुआ. लेकिन वो कहता ना कि मेरे को तो सबने कहा था छोड़ दो, पर उसको अपने पर विश्वास था. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इवन इफ नोबडी इज ट्रस्टिंग यू, यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ. सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ बिलीफ, ये आपको बहुत आगे लेकर के जाता है.
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: खुशी, सेहत और दौलत जरूरी हैं, पर एक जैसे नहीं। आइए इनकी इम्पोर्टेंस समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: यू नो आई थिंक राकेश झुनझुनवाला पास्ट अवे लास्ट ईयर, और मुझे याद है उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, उनके आखिरी दौर की बात है कि वो कहते हैं कि आज मैं वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया हूँ, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि भगवान ने मुझे बेटर हेल्थ दिया होता। मैं भगवान से सिर्फ यही दुआ करता हूँ। तो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई लर्न फ्रॉम दैट इज कि आदमी के पास पैसा भी बहुत हो, लेकिन अगर उसे इंजॉय करने के लिए प्रॉपर हेल्थ नहीं है तो क्या ही कर लेगा। तो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग बहुत जरूरी है।
4: हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों जरूरी हैं, और तीनों का एफर्ट अलग है।
3: हाँ,
4: हमें लगता है वेल्थ आ जाएंगे तो हेल्थ अपने आप आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हेल्थ के लिए अलग, जो हम कहते हैं एक घंटा तो निकालो एक्सरसाइज के लिए, एक घंटा तो निकालो, समय पर तो सो, अच्छा खाना तो खाओ, वो हेल्थ है। उस पर भी हमारा कईयों का अटेंशन नहीं होता, कुछ भी खाया, कभी भी सोया, कभी भी उठा, एक्सरसाइज नहीं करी। हेल्थ एक अलग ब्रैकेट में है। वेल्थ वो तो हमें सबको पता है, हम कितनी कितनी मेहनत करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं, पर हमें लगता है वेल्थ आ जाएंगे तो खुशी आ जाएंगे। नहीं होता। खुशी मन की स्थिति है। वेल्थ माना कंफर्टेबल लाइफ, नॉट नेसेसरली अ हैप्पी लाइफ। सो यू कैन बी वेरी कंफर्टेबल, आपका एक बहुत कंफर्टेबल घर है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, कंफर्टेबल सोफा है, आसपास नौकर हैं, तो भी आप एंजाइटी में हो सकते हैं, तो भी आप बहुत परेशान और डिप्रेशन में हो सकते हैं। तो तीनों के लिए अलग वर्क करना पड़ता है।
3: बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत बात कही।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: été.
1: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: पहले खुशी ढूंढिए, डिसिप्लिन खुद जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा. आइए समझते हैं.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
3: कभी कभी हम डिसिप्लिन जो है वो इसलिए भी करते हैं किसी और को इम्प्रेस करने के लिए. तो अगर वो हमारा जर्नी रहा तो वो ज़्यादा दिन लास्ट नहीं करेगा. कभी कभी हमको वज़न इसलिए कम करना होता है क्योंकि हमको किसी और को इम्प्रेस करना होता है. कभी हम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसलिए सीखना चाहते हैं कि किसी को इम्प्रेस करना है.
4: नहीं, हम किसी के लिए नहीं कर रहे होते उसमें. एक्चुअली हम किसी को भी क्यों इम्प्रेस कर रहे होते हैं, क्योंकि वो इम्प्रेस होगा तो वो
3: हमसे खुश होगा,
4: और जब वो हमसे खुश होगा तो हमें
3: अच्छा हमें बेहतर लगेगा.
4: तो हम कर तो अपने ले रहे होते हैं.
3: अच्छा, तो वो भी ठीक है अगर किसी को इम्प्रेस करने के लिए भी कर रहे हो, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन तरीके से कर रहे हो तो कुछ सीख ही लोगे आप.
4: एक्चुअली वो बहुत ठीक तो नहीं है. सी, बट देन अंडरस्टैंड ये करना होता है कि हम कर अपने ले रहे होते हैं. भले आप क्या कह रहे होते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स खुश हो जाएंगे, पर आप पहले ये वाली जो लाइन है ना कि मैं उनके लिए कर रहा हूँ, वो लाइन ठीक नहीं है.
3: कर हम अपने लिए.
4: हाँ, हम कर अपने लिए रहे होते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो खुश होंगे, उनकी खुशी में हमारी खुशी होती है. तो ये मैं उनके लिए कर रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं होता. हम कुछ किसी के लिए नहीं करते हैं. कहीं ना कहीं सटली उसमें हमारा स्वार्थ जरूर होता है, उनकी खुशी में हमारी खुशी होती है. तो राइट मोटिवेशन तो ये होगा कि आप जो कर रहे हैं आप अपने लिए करें.
3: आपने मुझे बहुत प्यारी लाइनें याद दिला दी कि कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पर रोना आया. बहुत खूबसूरत.
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया. ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: React नहीं, सोच समझकर respond कीजिए. आइए दोनों का फर्क समझते हैं.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
3: मुझे याद है कि डू हार्ड थिंग्स बोल के किताब है, वो लिखी है स्टीव मैग्नस ने, वो ऑथर हैं, ओलंपिक्स में जो पार्टिसिपेट करते हैं उनके साथ बहुत काम करते हैं, एथलीट्स के साथ काम करते हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ ऑथर भी हैं. तो वो कहते हैं कि उनकी किताबें जो डू हार्ड थिंग्स है, उस किताब में उन्होंने कई बातें लिखी हैं, उसमें से वो कहते हैं कि मेडिटेशन जो है वो हमारे रिएक्शन और रिस्पॉन्स के टाइम को डिले कर देता है. तो वो डिसिप्लिन के लिए लिखते हैं कि मेडिटेशन भी डिसिप्लिन का बहुत बड़ा हिस्सा है, मेडिटेशन से डिसिप्लिन बढ़ता है वो, क्योंकि रिएक्ट करना और रिस्पॉन्ड करना में दो फर्क है. और वो कहते हैं कि बड़े से बड़े एथलीट को आप देखेंगे वो रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट नहीं करते, और मेडिटेशन उसका बहुत बड़ा हिस्सा है. और क्या आपको लगता है कि मेडिटेशन से हमारी लाइफ में ज़्यादा डिसिप्लिन आता है?
4: 100%. क्योंकि क्या होता है, जब आप ओलंपिक्स लेवल पर पहुंच जाते हैं, जब आप बहुत हाई लेवल पर पहुंच जाते हैं ना, तो वहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा आपके टैलेंट और स्किल का रह ही नहीं जाता. क्योंकि वहां पर हर कंट्री के बेस्ट आए हुए हैं.
3: बिल्कुल, हाँ, बहुत बड़ी बात है.
4: तो वो सब हार्ड वर्किंग है, वो सब उस स्पोर्ट में परफेक्ट है, स्किलफुल है, टैलेंटेड है,
3: 10 on 10 है,
4: वो सारे 10 on 10 है. अब आपके अंदर जो फर्क रहता है वो 0.1 सेकंड, 1 सेकंड का भी नहीं होता,
3: फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड. बिल्कुल.
4: तो वहां पर जो हार जीत रह जाते हैं ना इतने टॉप लेवल पर, वो ज्यादातर मेंटल टफनेस की ही होती है.
3: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही
4: है. इसीलिए आजकल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इतनी क्यों आ गई है. पूरा एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट ही है. आपकी जो टीम है उसके साथ फिटनेस कोर्स अलग चलता है, लेकिन जो आपका साइकोलॉजिस्ट है वो अलग चलता है. कि अगर आप मन से हार गए तो आप कितने भी टैलेंटेड हैं, आप कितने भी स्किलफुल हैं, आप हार जाएंगे.
3: बिल्कुल. अगर इसका जीता जागता उदाहरण देखना हो तो कुछ दिनों पहले चैंपियंस ट्रॉफी में ग्लेन फिलिप्स ने पाकिस्तान के मैच में एक अपने लेफ्ट साइड पे कैच लिया, और फिर इंडिया के खिलाफ उन्होंने अपने राइट साइड पे कैच लिया. एंड जहाँ तक मुझे याद है, रिप्ले में भी देख रहा था, 0.62 सेकंड्स का रिएक्शन टाइम उनके पास था, वो उड़ते हुए उन्होंने कैच लिया पैरेलल टू द ग्राउंड. तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स में तो बहुत सारे हमको एग्जांपल मिलते हैं कि एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट फिजिकल हेल्थ, इट्स नॉट अबाउट ट्रेनिंग, इट्स नॉट अबाउट माइंडफुलनेस,
4: इट इज अबाउट दैट आल्सो.
3: बट सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप मेंटली, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, अरे यार इतनी तेज बॉल आ रही है, अरे हवा पे कौन उठेगा, कपड़े गंदे हो जाएंगे, बट टू बी एबल टू रिएक्ट लाइक दैट, वो इनह्यूमन कैपेबिलिटी है.
4: इट गिव्स यू एन एज. बाकी सब कुछ इम्पोर्टेंट है, और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. ऐसा नहीं, फिटनेस भी उतनी इम्पोर्टेंट है, ट्रेनिंग भी उतनी इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस भी, स्किल भी, लेकिन वो जो मेंटल टफनेस है वो आपको औरों से एक थोड़ा सा
3: नहीं, बहुत बेहतर बनाता है,
4: एज आपको दे देती है. जो मुझे याद है, एक जो माइकल फेल्प्स करके,
3: बिल्कुल, ओलंपिक
4: स्विमर है, बहुत बार
3: वर्ल्ड रिकॉर्ड,
4: तो उनके कोच जो कहते थे कि वो जो आप रिस्पॉन्स और रिएक्शन की बात करें, कहते हैं उन्होंने अपने मन में हर प्रकार का रिस्पांस देखा होता था. वो जीत रहे हैं वो भी देख लिया. अब उनकी वो जो रेस है वो 8-9 सेकंड की होती है.
3: इट
4: इज जस्ट 8-9 सेकंड्स. उसके बीच में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं वो भी देख लिया. कि मना स्विमिंग कैप उतर सकती है, जो भी उनके चैलेंजेस हो वो भी देख लिया. उन चैलेंजेस में वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे वो भी देख लिया. तो वो मन ट्रेन हो जाता है. आपके पास 9 सेकंड में वो मार्जिन नहीं रहते कि आप सोचेंगे और रिस्पॉन्स देंगे.
3: बिल्कुल.
4: आपने ऑलरेडी कम से कम 100 बार वो चीज देख ली है कि अगर ये होगा
3: तो मैं ऐसे करूंगा,
4: तो ये मेरा रिस्पॉन्स होगा. सो इनकेस अगर वो होता है तो वो रिस्पॉन्स आपका बहुत नेचुरल होता है, ऑटोमेटिक होता है. और ये भी देख लिया कि 1% इफ आई लूज, देन कितनी ग्रेस और डिग्निटी से हम सामने वाले को जा करके कंग्रेचुलेट करते हैं, उसको उस फेलियर को भी हम कैसे एक्सेप्ट करते हैं, वो भी देख लिया. का जब सब कुछ देख लिया होता है तब वो इतनी बार मेडल जीत पाते हैं. इट इज नॉट जस्ट देयर स्किल एंड प्रैक्टिस.
3: बहुत बहुत खूबसूरत एग्जांपल आपने दिया, वेरी ब्यूटीफुल.
0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. only on Mirchi. It's hot. Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari's sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। सिस्टर श्रेया, सवाल आया है कि अजीत पाल हैं, वो पूछ रहे हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आता है और कई बार आता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, कई देर तक वो मेरे दिमाग में चलता रहता है जब वो स्थिति या वो इंसान चला भी जाए, और उससे मैं बहुत इरिटेटेड रहता हूँ काफी लंबे समय तक। ये मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, प्लीज मुझे गाइड करिए।
4: जब हम गुस्सा करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हमारा ही होता है। गुस्सा हमें आता इसलिए है क्योंकि एक्चुअली ये वीकनेस की निशानी है।
3: अच्छा,
4: कब हमें गुस्सा आता है? जब सामने वाला कुछ हमारे अनुसार नहीं करता है।
3: बिल्कुल
4: सॉरी, मेजॉरिटी केसेस में हमें लगता है सब कुछ हमारे अनुसार होना चाहिए। लोग हमारे अनुसार होने चाहिए, सिचुएशन हमारे अनुसार होना चाहिए, हमने ऐसा बोला उसको ऐसा करना चाहिए। सो व्हेन थिंग्स डोंट हैपन माय वे, मेरे तरीके से नहीं होता, तो मुझे गुस्सा आता है। गुस्सा आना माना क्या है? अंदर डिस्टर्बेंस हो रही है। बोल में भी बाद में आएगा, लेकिन अंदर मन डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। मन थॉट्स क्रिएट करता है। तो गुस्से में क्या थॉट आ रहे हैं, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको टाइम पर आना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसको कितनी बार समझाए। आपका एक एक थॉट गुस्सा क्रिएट कर रहा है, गुस्सा आता नहीं है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम कोई चीज बहुत बार कर लेते हैं ना, तो हमारा संस्कार बन जाता है, नेचर बन जाती है। तब हमें लगता है ये ऑटोमेटिक हो रहा है, लेकिन एक्चुअली सबकॉन्शियस लेवल पर वो हम ही कर रहे होते हैं, हम क्रिएट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो थॉट अपने आप तो नहीं आता ना, हम क्रिएट कर रहे होते हैं। सेम सीन में किसी को बहुत काम होगा और किसी को बहुत गुस्सा आ जाता है। सेम चीज होगी, एक व्यक्ति लेट आया, एक कहता ठीक है ना, कोई बात नहीं, अभी आ गया ना, चलो अब शुरू करते हैं। दूसरा इतना गुस्सा कर देता है, कैसे लेट आया, उनको दूसरे के टाइम की वैल्यू नहीं है, उनको अपने टाइम की वैल्यू नहीं है, उनको मेरी वैल्यू नहीं है। सो दीज टू पीपल आर थिंकिंग डिफरेंटली। तो गुस्सा कुछ नहीं है, कुछ मेरे अनुसार नहीं हुआ, मेरे मन ने गलत सोचना शुरू किया, मेरा मन डिस्टर्ब हो गया। अब वो थॉट लेवल तक तो रहता नहीं है। फिर वो जो मैं गलत सोच रहा हूँ, अगर वो कोई मेरा सबॉर्डिनेट है, जूनियर है, अगर सीनियर होता तो हम कहते मैं गुस्सा पी गया ना, कई बार हम कहते मैं गुस्सा पी गया, तो गुस्सा पी का क्या मतलब है?
3: फिर भी रह गया अंदर।
4: मैंने क्रिएट तो कर लिया, मेरा नुकसान तो होना ही है, पर मुझे पता है कि अगर मैंने इसको निकाल दिया तो और ज्यादा नुकसान हो जाएगा, नौकरी भी छूट सकती है। तो पी लिया मना, सप्रेस कर लिया, पर मेरा मन डिस्टर्ब हुआ, मेरी हेल्थ पर उसका इम्पैक्ट होगा, और वो वहां पर जरूर निकलेगा जहां मैं निकाल सकता हूँ।
3: तो इसको अवॉइड कैसे करें?
4: क्रिएट ही नहीं करें।
3: वो कैसे होगा?
4: आपका मन है, आपकी सोच है, आप डिसाइड कर सकते हैं क्या सोचना है, आपको काम ही तो कराना है ना। पहले तो ये समझे कि सब कुछ हमारे अनुसार होगा, ये कैसे पॉसिबल है? अगर कुछ नहीं हो रहा है तो उस चीज का इतना मेरे ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो हम तो लोगों के और उनके संस्कारों के और उनके बिहेवियर के गुलाम हो गए ना। समझो कोई लेट आया है, आप कहते मेरे को बहुत गुस्सा आया, आप अपने को प्रोटेक्ट करें ना, वो लेट आया, आप अपने को कहे अच्छा इसको कहना है, ये नहीं चलेगा, कंपनी में ऐसा नहीं चलता, कुछ तो डिसिप्लिन होता है ना, आपको उसको कहना है, बस आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, आपको सही सोचकर सभ्यता से वो बात कहनी है, क्योंकि अगर आप डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, फिर आपके बोल भी सभ्य नहीं होते।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Radio Mitri, New York, South Asia's number one radio station. It's hot.
1: Mitri Mornings. Mitri Mornings with Priscilla. Only on Radio Mitri, New York. It's hot.
2: Mitri Mornings.
1: Mitri Mornings with Priscilla. It's hot.
3: देखो तुम माइक के उस पार हो, मैं माइक के इस पार हो. तुम्हारे हाथ में कॉफी चाय या ब्रेकफास्ट है, मेरे हाथ में माइक है. एंड कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, थैंक गॉड मिर्ची मॉर्निंग्स ने मुझे उठा दिया, वरना अलार्म क्लॉक की आवाज सुन सुनकर तो मैं परेशान हो गई थी. Hey there, good morning. मेरा नाम है प्रिसिला. सुन रहे थे मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर, जो कि अभी अभी शुरू हुआ है. एंड नाउ वेदर यूर ड्राइविंग टू वर्क, पैकिंग टिफिन, ड्रॉपिंग योर किड्स ऑफ टू स्कूल, या फिर प्रिटेंड कर रहे हो जस्ट रेस्टिंग योर आईज फॉर 5 मोर मिनट्स व्हाइल यू बिकम अ बुरिटो इन योर ब्लैंकेट. आज का प्लान काफी सिंपल है. काफी सारी बातें होने वाली है, काफी सारा नॉस्टैल्जिया होने वाला है, बहुत सारी गुड वाइब्स होने वाली है, एंड इनफ मिर्ची एंड मसाला टू मेक योर मॉर्निंग्स अ लिटिल मोर मिर्चीदार. And if you're enjoying the ride, come say hi to me on Instagram and X. Mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp par number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay.

0: फ्रेश माल।
1: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है। उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन।

इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक।

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में ये है मिर्ची मॉर्निंग्स एंड चलो टाइम मशीन में बैठकर पता करते हैं आज का दिन क्यों खास था। 1877 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एसएफ हॉल डिस्कवर डायमोज, मार्स का छोटा आउटर मून। फिर 1919 में इंडिया वेलकम्ड अ फ्यूचर स्पेस लेजेंड डॉक्टर विक्रम साराभाई, बॉर्न इन अहमदाबाद, लेटर ही बिकेम नोन एज द फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम। 1981 में IBM ने अपना फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर दी IBM PC 5150 स्टोर्स में सेल करना स्टार्ट किया। और 1990 में सू हेंड्रिक्सन डिस्कवर्ड सू, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कंप्लीट टीरेक्स फॉसिल एवर फाउंड। एंड देयर इज मोर। 1994 में मेजर लीग बेसबॉल प्लेयर वेंट ऑन अ मैसिव स्ट्राइक दैट लास्टेड 232 डेज, कैंसलिंग द वर्ल्ड सीरीज। एंड 2000 में द रशियन सबमरीन कुर्स्क सैंक आफ्टर द ऑनबोर्ड एक्सप्लोजन, किलिंग ऑल 118 पीपल अबोर्ड। एंड टुडे इज ऑल्सो इंटरनेशनल यूथ डे, सो वेदर यू आर 18 और 48 एंड स्टिल गूगलिंग कैन एडल्ट्स एक्चुअली फिगर आउट लाइफ, कंग्रेचुलेशंस, यू आर यंग एट हार्ट। And now follow me at Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. Instagram or X पर मेरा यही handle name है और WhatsApp number है 9033 Mirchi, that's 9033 6472 44. Stay tuned and stay hot.

0: साथ जीतू राज only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Oh, Kaden, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake, please theater में जाकर ही देखो is what जीतू राज will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake, किसी से भी story मत सुनो, don't take any spoilers. फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी.
3: Spiders have three life cycles.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात जेकब बैटनो, also MJ अर्थात जेंडाया and Peter Parker यानी टॉम हॉलैंड. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो. Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड के फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म. तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने. वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज.
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning. It's Priscilla on Mirchi Mornings. And here's your weather check. Because before you leave the house, you need to know aaj kya kya carry karna hai saath mein. Umbrellas, sunglasses, ya phir dono. Right now, we are at 70 degrees Fahrenheit and it's cloudy. It's feeling like 71 degrees Fahrenheit. Aur abhi weather jo hai, it's relatively nice. शुगर करो ऊपर वाले का एंड डोंट गेट टू कंफर्टेबल बिकॉज शाम के 5 बजे तक सन तुम्हारे साथ ही रहने वाला है विद टेम्परेचर्स क्लाइंबिंग टू अ हाई ऑफ 87 डिग्रीज फारेनहाइट एंड विद ह्यूमिडिटी सनशाइन एंड विंड प्लेइंग देयर गेम द 87 डिग्रीज फारेनहाइट कुड फील लाइक 90 डिग्रीज फारेनहाइट मतलब आज थर्मामीटर के भाव काफी बड़े हुए हैं यस्टरडेज हाई वॉज 87 डिग्रीज फारेनहाइट सो टेम्परेचर वाइज आज थोड़ा सा हाई रहने वाला है अब रेन वाइज देख लेते हैं पिछले 24 घंटों में there was zero rain but we are expecting around 8 millimeters over the next 24 hours so keep that umbrella handy especially if you are heading out later around 5 pm tak things will turn partly cloudy so morning ki sunshine jo hai tabhi tak rehne wali hai afternoon ki heat bhi tabhi tak rehne wali hai lekin evening ke clouds tab aa jane wale hain So, आज के दिन बाहर निकलोगी तो लेयर के प्लेयर बनो कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर वेयर योर SPF 50++++ एंड ऑफ कोर्स कीप मिर्ची की वाइब्स ऑन मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस दैट इज MIRCHIPRIS टैग मी इन योर एस्थेटिक वेदर पिक्चर्स एंड WhatsApp पर मुझसे कनेक्ट करो 9033 मिर्ची पर दैट्स 9033 647244 स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey, I'm Priscilla and this is Mirchi. Our Katri, jahan par tumhe teen updates milti from around the world only on Mirchi Mornings. सबसे पहले न्यूयॉर्क के मेयर जोरान ममदानी एडमिनिस्ट्रेशन इज रोलिंग आउट लार्ज कर्बसाइड गार्बेज कंटेनर्स अक्रॉस न्यूयॉर्क एज पार्ट ऑफ अ प्लान टू गेट दोज इनफेमस ट्रैश बैग्स ऑफ द साइडवॉक्स द ब्रॉडर प्रोग्राम एम्स टू कंटेनराइज रेजिडेंशियल ट्रैश सिटी वाइड विद थाउजेंड्स ऑफ स्पेसेस प्लान्ड मतलब कि न्यूयॉर्क में अब गार्बेज का डेजिग्नेटेड पार्किंग स्पॉट बन गया है नंबर टू पर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड हैज बीन अपॉइंटेड बाय रशिया एज इट्स आर्बिट्रेटर इन एन इन्वेस्टमेंट ट्रीटी डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग यूक्रेन स्टेट ओन्ड बैंक ओशाट बैंक द केस कंसर्न्स क्लेम्ड लॉसेस इन्वॉल्विंग एसेट्स इन यूक्रेनियन रीजन्स अफेक्टेड बाय द रशिया यूक्रेन वॉर अ थ्री मेंबर ट्रिब्यूनल विल हियर द डिस्प्यूट एंड लास्टली आईपीएल से रिपोर्ट सेज Hardik Pandya explored a possible return to Gujarat Titans, but reportedly wanted the captaincy as a condition. Gujarat Titans reportedly said no. The franchise has discussed a possible return with current captain Shubman Gill, who was reportedly open to the move. However, Pandya's spokesperson said he had no direct conversations with the franchise about a transfer. And that's it for Mirchi Hour ka 3. Main hoon Priscilla, tumhare saath mein. Connect karo mujhse Insta aur X par. Mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp ka number 9033 Mirchi. That's 9033647244. Chalati hoon Mirchi dar bangers tumhare liye. Stay tuned and stay hot.
2: Yeah. Wanna feel that? Come on, girl. Be the beat.

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirci, burga.
1: हेलो,
2: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: बोल रहे
2: हैं राज जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, कौन सा बोल रहे हैं?
2: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
1: लेकिन है किस लिए, ये तो बताइए, किस लिए, कहाँ पे लगाना
2: नहीं,
1: है?
2: नहीं, वही मैं, आप जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं, हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं। उसमें अब जाहिर सी बात है भाई, आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा।
1: तो
2: हाँ, वही वही वही मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी नहीं नहीं, पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे, या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम है आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ हैं,
1: तो बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ चाहिए हमारे पास? तो
2: नहीं नहीं, आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना? ये
1: कॉपी मुझे भी भेजना
2: राज जी। एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
1: अपने फ्रेंड्स को, उनको भी भेज।
2: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। आप थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहें तो?
1: हाँ बिल्कुल बताइए।
2: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वॉन्टेड इस आदमी को, नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें। राज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा। मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था, वो बन गया आपका, अब आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप, इसलिए
1: कुकड़ों को।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची फ्रेश माल,
4: एक्सप्लोसिव वाइब और पावर पैक्ड एनर्जी का डोज तबाही।

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: Hey, it's Priscilla and this is Mirchi Mornings and today's love story has football ka glamour with a very expensive looking pair of rings. Cristiano Ronaldo and Jorgina Rodriguez are married finally. The 5-time Ballon d'Or winner and his longtime partner tied the knot in an intimate civil ceremony in Cascais, Portugal. And Ronaldo didn't exactly send a press release saying, "Dear world, I am finally married." Nope, he took to Instagram and shared a picture of their wedding ring. The couple started dating back in 2016 and Jorgina announced their engagement exactly a year before the wedding. So after nearly a decade together, looks like this relationship finally got its goal. Got it? Honestly, Ronaldo has won 5 Ballon d'Or, but this one might be the best ring that ever happened to him. Get it? And speaking of rings and diamonds, if all this wedding sparkle has you thinking, shayad agli bari meri hai, to Tanishq presents Festival of Diamonds, jahan par tumhe mil raha hai 25% off on diamond value and making charges. That's a big wow. Lekin aur bhi hai, saath mein agar tumhare paas koi purana gold pada hai, which should be 18 carats and above, usko le jaakar wahan par exchange karane par tumhe 0% deduction milega. And of course, is sab pe conditions applied hai, so whether you're celebrating a new beginning, upgrading your bling thing, या फिर simply window shopping कर रहे हो, या फिर मेरी तरह तुम्हें सिर्फ diamonds पसंद है, पहुंचो तनिष्क के फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स पर। और अभी मिर्चीदार गाने सुनाने वाली हूं मैं तुम्हें बैक टू बैक। मेरा नाम है प्रिसिला, शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स। स्टे विथ मी ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स एज वेल। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: आज का बर्थडे गैंग इज लोडेड विद बॉलीवुड एंड हॉलीवुड एंड फैशन एंड पॉलिटिक्स एंड वन मैन हु लिटरली टोल्ड अस टू गेट अ बेबी गॉड बैक। आज है अगस्त 12th। मेरा नाम है प्रिसिला, शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स एंड हे इफ इट्स योर बर्थडे, सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू यू जी। एंड बॉलीवुड साइड पे वीव गॉट सारा अली खान, जिन्होंने केदारनाथ, सिम्बा एंड लव आजकल में काम किया। एंड इंटरनेशनली बर्थडे केक गोज टू कैरा डेलेविन, द मॉडल टर्नड एक्ट्रेस विद अमेजिंग आईब्राउज। देन वीव गॉट बेन एफ्लेक के छोटे भाई केसी एफ्लेक, हु इज ऑल्सो एन ऑस्कर विनिंग एक्टर एंड डायरेक्टर। And then we've got Lakeith Stanfield, known for Atlanta and Judas and the Black Messiah. And then there's Sir Mix-a-Lot. Yes, that's Sir Mix-a-Lot, the rapper behind Baby Got Back. So agar aaj ke din tumhara bhi happy birthday, to congratulations. Sabse pehle tum kafi amazing list ka part ho and tumhara birthday soundtrack to set hai. And saath mein aaj ke din we've got the investor and philanthropist George Soros and closer to home, Karnataka's political veteran Siddaramaiah. To aaj ke din khao piyo aish karo aur apne बर्थडे शाउटआउट्स अपने लिए या अपने फ्रेंड के लिए मुझे भेज सकते हो। मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। साथ में कनेक्ट कर सकते हो सोशल मीडिया पर भी, इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। अभी के लिए मिर्चीदार बैंगर्स तुम्हारे लिए प्ले करती हूँ, स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।

0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाय, माय नेम इज पीटर पार्कर।
2: ओके देन, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ गई है एंड फॉर गॉड्स सेक प्लीज थिएटर में जाकर ही देखो इज व्हाट जीतूराज विल टेल यू, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, स्पेशली जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी विस्पर्स, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। एंड फॉर गॉड्स सेक किसी से भी स्टोरी मत सुनो, डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
3: स्पाइडर्स हैव थ्री लाइफ साइकल्स।
2: आई जस्ट कांट बिगिन टू टेल यू। I'll tell you the biggest thing, Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है, क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland, in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है। क्यों, क्या, कैसे, वो जाकर देखो। Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है जीतूराज ने, वो क्या है। ओके, आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है। फॉर गॉड्स सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: है प्रिसिला।
1: राज रोज विशेज एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,020, $4,020 पर ट्राउंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं और इस साल के बिगनिंग में गोल्ड $5,600 पर ट्राउंस पीक टच कर चुका है। आज करेक्शन के साथ $4,020 पर ट्राउंस डेफिनेटली एंट्री पॉइंट पड़ती है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। 1 ounce, 10 ounce, 100 grams, किलो bars, PAM certified gold and silver bars. में इन्वेस्ट करने के लिए राज ज्वेल्स की टीम के साथ कनेक्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
0: एंड देयर यू हैव इट, मिर्ची मॉर्निंग्स पर सुनी तुमने एक्सक्लूसिव गोल्ड रेट अपडेट विथ मी प्रिसिला। ऑफ कोर्स फॉलो मी इंस्टा एंड एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. For more such updates, stay tuned and stay hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La fiutba la burka. Milci, burka.
2: भाई साहब श्रीनिवास पुरी थाने से बोल रहे हो, मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
3: मोबाइल
2: ये सर आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
3: क्या रिपोर्ट आ गई है?
2: यही क्या, ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
3: मोबाइल चोरी हो गया?
2: हाँ जी। भाई साहब हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
3: हाँ पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
2: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
3: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
2: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
3: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
2: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
3: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
2: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
3: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
2: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
3: हाँ जी सर।
2: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
3: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
4: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर,
3: कुकड़ों को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning. It's Priscilla with you. Welcome to Rashi Zone Part 1, जहाँ पर हम बातें करेंगे राशियों के बारे में only on Mirchi Mornings.
2: Mirchi Rashi Zone.
1: It is यानी कि मेष राशि. विजन काफी क्लियर है, सो वर्क प्रोजेक्ट्स को कॉन्फिडेंटली असेस कर पाओगे. बस स्पीड थोड़ी सी स्लो रखो. एक शॉर्ट आउटडोर वॉक स्ट्रेस को रीसेट कर सकता है. लकी कलर तुम्हारा है टील एंड लकी नंबर इज 8. टॉरस यानी कि वृषभ राशि, एनर्जी स्ट्रांग है, बॉडी भी कोऑपरेशन मोड में है. न्यूट्रिशियस फूड चूज करो और ट्रस्ट करो फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना. हाँ भाई, फ्राइज भी फूड होता है, लेकिन आज थोड़ा सैलेड की तरफ ध्यान देना. लकी कलर फॉर यू इज कोरल. लकी नंबर इज 4. जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, स्केड्यूल में थोड़े से डिलेज या सडन चेंजेस पेशेंस टेस्ट कर सकते हैं. हर चीज का फोरेंसिक एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है. इवनिंग को समवन क्लोज के साथ थोड़ा चिल प्लान बनाओ, सब सही हो जाएगा. लकी कलर फॉर यू इज लैवेंडर. लकी नंबर इज 3. कैंसर यानी कर्क राशि, इंट्यूशन आज ऑन पॉइंट है. कुछ होने से पहले ही वाइब पकड़ लेते हो तुम. इस क्लैरिटी को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में यूज किया जा सकता है. जस्ट अ थॉट. लकी कलर फॉर यू इज सिल्वर. लकी नंबर इज 7. लियो यानी कि सिंह राशि, इमोशनल रीसेट का पीसफुल विंडो मिल रहा है. फैमिली के साथ कंफर्टिंग पॉजिटिव मोमेंट्स एंजॉय करो. आज मैं सब हैंडल कर लूंगा मोड से थोड़ा सा ब्रेक लो और थोड़ी सी हेल्प मांगो. लकी कलर फॉर यू इज एम्बर. लकी नंबर इज 1. वर्गो यानी कन्या राशि, पर्पस क्लियर नहीं है तो रशिंग से फ्रिक्शन बढ़ सकता है. पेस को स्लो करो, स्पेशली मनी मैटर्स में. स्प्रेडशीट्स को भी सांस लेने दो भाई. लकी कलर फॉर यू इज ऑलिव. लकी नंबर is 6. And that was Rashi Zone Part 1. मैं of course हूँ Priscilla तुम्हारे साथ में. This is Mirchi Mornings. मुझे connect करो Insta और X पर. मेरा handle है Mirchi Pris and WhatsApp पर number है 9033Mirchi. That's 9033647244. अब बारी है झमाझम Mirchi दार गानों की. थोड़ी सी देर में वापस आती हूँ. Stay tuned and stay hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब
3: मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: And this is Priscilla welcoming you back to Rashi Zone ka part 2 only on Mirchi Mornings.
2: Mirchi Rashi Zone.
1: लीब्रा यानी कि तुला राशि, रेस्टलेसनेस थोड़ी सी सरफेस पर आ सकती है, बट यूज कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन. रिव्यूड इन्वेस्टमेंट्स में फेवरेबल पोटेंशियल दिख रहा है, सो वाइज चॉइसेस मैटर. लकी कलर इज सफायर ब्लू, लकी नंबर इज 11. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, छोटी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन थोड़ी सी फ्रिक्शन क्रिएट कर सकती है आज. इश्यूज को रूट तक समझो, लेकिन मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस को आज होल्ड पर रखना ही बेटर है. लकी कलर इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 5. सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, फ्रेश स्टार्ट एनर्जी इज हियर. करियर हो या रिलेशनशिप हो, न्यू बिगिनिंग्स को एम्ब्रेस करने का दिन है. ओल्ड बैगेज को कैरी ऑन में डालकर क्यों घूम रहे हो. लकी कलर फॉर यू इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 9. कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, आज तुम लोगों के लिए स्टेबलाइजिंग फोर्स बनोगे. वर्क प्लेस में हार्मनी क्रिएट करो व्हाइल फाइनेंसेस लुक स्टेडी. बेसिकली ऑफिस का अनऑफिशियल थेरेपिस्ट आज से तुम हो. लकी कलर फॉर यू इज मस्टर्ड, लकी नंबर इज 2. Aquarius यानी कुंभ राशि, एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन या मीटिंग कुड लीव अ स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन ऑन यू. योर इनोवेटिव आइडियाज शेयर करने का टाइम आ चुका है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड स्पेंडिंग से बचने का टाइम भी चल रहा है. आइडियाज रेवोल्यूशनरी हो सकते हैं, इम्पल्स परचेज जरूरी नहीं है. लकी कलर फॉर यू इज इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर इज 13. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाइसिस यानी कि मीन, जेन्युइन इमोशनल कनेक्शन मैटर मोस्ट टुडे. पेशेंस और कंसिस्टेंसी रखो, because that could open doors professionally too. Slow progress is still progress, okay? Lucky color for you is sea green. Lucky number is 10. And that's it. Your cosmic download is done. Main hoon Priscilla tumhare saath mein. Obviously, on Mirchi Mornings, mere saath yahan bane raho aur social media par bhi. Mirchi Pris is my handle name. That is MIRCHIPRIS. That's on Instagram and X and WhatsApp par. Number hai 9033Mirchi. That's 9033-64724. For. Stay tuned and stay hot.
3: Yeah, the meat bros. Just tell me.

0: साथ जीतू राज Only on Mirchi, it's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what Jeetu Raj will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी-छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers उनका प्यार उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: spiders have three life cycles
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batlow, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film it's a little different. In fact I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्म नहीं देखी है तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओह आल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माय रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है जीतू राज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: And just like that, my friend, Mirchi Mornings is wrapping up. Main hoon Priscilla, tumhare saath mein. But before I let you go on with your day, here's something for all my desi fashion lovers out there in New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison on Oak Tree Road. We are talking about 70 years of Indian craftsmanship, from gorgeous handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear. So agar tumhare family WhatsApp group mein suddenly messages drop hone lag gaye ki beta shaadi ki shopping kab shuru kar रहे हो, बेटा शादी आने वाली है, तुमने अपने लिए कपड़े खरीद लिए या नहीं खरीद लिए, बेटा तुम्हारी कजन की शादी है तो अच्छे कपड़े पहनकर आना, कांग्रेचुलेशंस, नाउ यू हैव अ डेस्टिनेशन जहां से तुम ये सारी शॉपिंग कर सकते हो. द यूएसए फ्लैगशिप स्टोर इज एट 1655 ओक ट्री रोड, एडिसन. जाकर चेकआउट करना बनता है, अमेजिंग कलेक्शन है उनका. सोक अप द कलर्स, द क्राफ्ट्समैनशिप एंड फुल देसी फैशन वाइब, सब कुछ तुम्हें वहां पर मिलेगा. लेकिन ये याद रखना कि सिर्फ देखने तो नहीं जा सकते, तुम जाओगे पक्का शॉपिंग स्प्री पर निकल जाओगे, ये मेरी गारंटी है. इट्स बिन एन एब्सोल्यूट प्लेजर हैंगिंग आउट विथ यू दिस मॉर्निंग. मेरा नाम है प्रिसिला एंड यू बीन लिसनिंग टू मिर्ची मॉर्निंग्स. थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर मॉर्निंग्स. अभी के लिए मिर्चीदार बैंगर्स ऑन रखते हैं. टाटा बाय बाय सिर्फ मेरी तरफ से है. जाकर कनेक्ट करो मुझसे Insta और X पर. मेरा हैंडल है Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp का नंबर भी नोट कर लो, 9033 Mirchi is my number, 9033647244. अभी के लिए टाटा बाय बाय, stay tuned and stay hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा, तुम्हारे साथ भी कभी ना कभी होता होगा कि तुमने कोई चीज बहुत मन से, बहुत शिद्दत से बनाई हो, एंड यू वांटेड एवरीबॉडी टू अप्रिशिएट दैट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लोगों को ना तारीफ करने का मन ही नहीं किया तो डिसअपॉइंटिंग तो लगता ही है। पुरानी जीन्स पे हेलो हेलो वेलकम, दिस इज मी श्रेया, और आते ही बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल ऐसा लगा था देवानंद और विजय आनंद साहब को, दोनों ब्रदर्स को, जब उन्होंने बनाई थी फिल्म गाइड। तो जब गाइड का प्रीमियर हुआ ना, पूरी इंडस्ट्री वॉज इन्वाइटेड, एंड विजय आनंद को लगा था कि थोड़ी ऑफ बीट फिल्म है, थोड़ी उनकी जितनी भी कमर्शियली सक्सेसफुल, यू नो, चटपटी मसालेदार बॉलीवुड फिल्म है उनसे अलग है, तो लोग आकर के ना उनको अप्रिशिएट करेंगे, कंग्रेचुलेट करेंगे कि कितना अलग कुछ बना दिया है। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, नोबडी वॉकड अप टू हिम एंड कंग्रेचुलेटेड हिम, एंड दिस लेफ्ट हिम शैटर्ड कि भाई क्या हो गया, ऐसा क्यों। लोगों को एक्चुअली गाइड का क्लाइमैक्स और इतनी अलग फिल्म ना पसंद ही नहीं आई, स्पेशली जो लोग प्रीमियर देखने आए थे, यानी भाई इंडस्ट्री के लोग। फिर क्या हुआ, गाइड यू नो इतनी सक्सेसफुल कैसे हुई, ये भी इंटरेस्टिंग कहानी है, सब बताऊंगी, अभी अभी तो आई हूँ, थोड़ा सा इंतजार करो। पुरानी जीन्स पे दिस इज मी श्रेया।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
3: बोल रहे हैं।
4: राज जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
3: बढ़िया है, कौन सा बोल रहे हैं?
4: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
3: लेकिन है किस लिए ये तो बताइए, कहाँ पे लगाना
4: नहीं
3: है?
4: नहीं, वही मैं, आप जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं, उसमें अब जाहिर सी बात है भाई आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा।
3: तो
4: हाँ वही मैं आपको बता रहा हूँ।
3: पूरी
4: नहीं, पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है,
3: बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ चाहिए हमारे पास?
4: नहीं नहीं, आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना?
3: ये मुझे भी भेजना
4: राज जी। एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
3: अपने फ्रेंड्स से, उनको भी भेजूंगा।
4: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। आप थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहे तो?
3: हाँ बिल्कुल बताइए।
4: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वॉन्टेड इस आदमी को, नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें। राज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा। मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया, आपका आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप, इसलिए
3: कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मूवी बॉक्स ऑफिस पे खुली तो एकदम फुल हाउस थी, लेकिन उसके बाद सब डिप करने लगा। लोग आ नहीं रहे थे देखने, टिकट्स बिक नहीं रहे थे। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिक हिट फिल्म गाइड, जिसमें थे देव साहब, उनके भाई विजय आनंद ने फिल्म बनाई थी ऑन द वेरी वेरी पॉपुलर बुक द गाइड विच वॉज रिटन बाय आर के नारायण। तो मैं बता रही थी कि जब लोगों को ये पता चला कि भाई देव साहब की फिल्म है तो लोग डेफिनेटली बॉक्स ऑफिस पे इसको देखने गए, लेकिन लोगों को ये इतनी अनकन्वेंशनल ऑफ बीट फिल्म और स्पेशली क्लाइमैक्स ना समझ में आने के चक्कर में ना कुछ ही दिनों में इसका कलेक्शन डिप करने लगा। बट कहते हैं बाय वर्ड ऑफ माउथ ये फिल्म इतनी पॉपुलर हुई और लोगों को जब इसका क्लाइमैक्स कुछ समझ में आया तो लोग वापस इस फिल्म को देखने लगे। आई मीन दिस वॉज वन ऑफ दोज फिल्म्स जिसको लोगों ने दो दो तीन तीन बार जा करके देखा एंड इसीलिए बाद में इसका कलेक्शन ओ हो हो आसमान छूने लगा। That is why 7 Filmfare Awards जीते थे इस फिल्म ने उस साल। पुरानी जीन्स पे आज इसी फिल्म की बातें मेरे यानी आपकी श्रेया के साथ, so don't you go anywhere.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इन्होंने तो इसको द मिसगाइडेड काइट बोल दिया था। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिक हिट फिल्म जिसमें थी वहीदा रहमान, जिसमें थे देव आनंद साहब, विजय आनंद ने बनाई थी। मूवी का नाम द गाइड। ये फिल्म जो थी ये अडेप्टेशन थी आर के नारायण की वेरी पॉपुलर फिल्म द गाइड की। तो भाई उनसे यू नो सारी परमिशंस ली गई थी इस फिल्म को बनाने के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा बॉलीवुड का तड़का तो डालना ही था ना, इसीलिए थोड़ा रोमांस एंगल भी दिखाया गया। बट ये बात आर के नारायण को बिल्कुल पसंद नहीं आई। आफ्टर ही सॉ द फिल्म ही गेव एन इंटरव्यू टू अ मैगजीन जिसमें उन्होंने कहा था कि ये द मिसगाइडेड गाइड है। पुरानी जीन्स पे आज इसी फिल्म की बातें, इसी फिल्म के गाने विद मी श्रेया। तो बस यहीं पे रहना पड़ेगा।

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची it's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what जीतू राज will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा एंड फॉर गॉड से किसी से भी स्टोरी मत सुनो डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी
3: स्पाइडर्स हैव थ्री लाइफ साइकल
2: आई जस्ट कांट बिगिन टू टेल यू आई टेल यू द बिगेस्ट थिंग स्पाइडरमैन में विलन कौन है यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू हु इट इज ऑल्सो तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि बिकॉज इट्स स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एंड स्पाइडरमैन rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland in this film it's a little different in fact I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से Tom Holland के shoulders पर rest करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो also there's a particular scene between John Bernthal अर्थात Frank Castle aka Punisher and Tom Holland अर्थात Peter Parker जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा also if you have kids around you enjoy it fully क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

दादा ने अपना पूरा बटुआ खाली कर दिया था मेलोडी से भरा हुआ फॉर दिस फिल्म। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड 1970s में फिल्म आई थी गाइड, जिसकी आज बात हो रही है। सो नवकेतन फिल्म्स यानी देव साहब का बैनर और उनके भाई विजय आनंद का बैनर, वो हमेशा जब भी फिल्म बनाते थे तो एसडी बर्मन साहब को हायर करते थे। इस बार क्या हो रहा था कि दादा उस टाइम पे आ चुके थे जब उनकी जगह नए म्यूजिशियंस को हायर किया जा रहा था, फिर चाहे वो उनके बेटे आरडी बर्मन साहब ही क्यों ना हो। सो एसडी बर्मन साहब को ना एक मौका, वो एक फिल्म चाहिए थी जिसमें वो अपना मिरेकल एक बार फिर से दिखा पाए, एंड गाइड प्रूव्ड टू बी वन ऑफ देम। व्हाई? बिकॉज उन्होंने अपना सारा बटुआ खाली कर दिया। मेलिफ्लुस ट्यून्स लाइक आओ, गाता रहे मेरा दिल ले लो, तेरे मेरे सपने ले लो, यू नो इतने सारे गाने, कांटो से खींच के आंचल ले लो, पिया तो से ले लो। तो इसी बात पे आज फिर जीने की तमन्ना है। कमिंग ऑल राइट नेक्स्ट, मैं हूँ श्रेया। एस डी बर्मन साहब ने कंपोज किया है, लता जी की आवाज है और वहीदा रहमान का डांस था, शैलेंद्र जी के लिरिक्स। अप नेक्स्ट फिल्म।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

देव आनंद को लगा कि उनका कोई सिग्नेचर ट्यून, सिग्नेचर गाना तो है ही नहीं इस फिल्म में, और फिल्म काफी टाइट चल रही, काफी स्ट्रेस में चल रही है। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइड टुडे। सो देव साहब ने जब ये पूरी पिक्चर बन गई और देखी अपने भाई विजय आनंद, हु वाज डायरेक्टिंग द फिल्म एज वेल, उनके साथ बैठ करके ना, तो देव साहब को लगा कि भाई इसमें मेरा कोई सिग्नेचर गाना तो है ही नहीं, क्योंकि वो जनरली एक आध गाना ऐसा सुपर डुपर हिट देते थे अपनी फिल्म का जिसमें बस वो गुनगुना रहे हैं और चलते जा रहे हैं, जैसे कि हम दोनों में है ना, मैं जिंदगी का साथ निभाता, राइट। तो क्या हुआ, जब पूरी पिक्चर कंप्लीट हो गई फिर इस पे म्यूजिशियंस को वापस बैठाया गया। एस डी बर्मन साहब, शैलेंद्र जी ने गाना लिखा एंड ऑफ कोर्स देव साहब इसमें एकदम अपनी मस्ती में चलते जा रहे हैं और गा रहे हैं मेरा दिल। यही गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूं श्रेया अनपुरानी।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट
1: मिर्ची पायोस्को साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: हाय माय नेम इज पीटर पार्कर
3: ओके देन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ गई है एंड फॉर गॉड सेक प्लीज थिएटर में जाकर ही देखो इज व्हाट जीतूराज विल टेल यू क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं स्पेशली जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी विस्पर्स उनका प्यार उनका गुस्सा वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा एंड फॉर गॉड सेक किसी से भी स्टोरी मत सुनो डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
4: स्पाइडर्स हैव थ्री लाइफ साइकिल्स।

0: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में एक पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो. Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म. तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने. वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज.
1: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इनको फॉरेन भेजा गया था कलर की टेक्निक को बारीकी से समझने के लिए। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइड। ये नव केतन प्रोडक्शंस की यानी देव साहब की उनके भाई विजय आनंद की पहली कलर फिल्म थी। अब हुआ ये कि विजय आनंद ने पहली बार एज एडिटर कमान पकड़ी थी अलोंग विद बाबू शेख एंड गाइड वॉज द फर्स्ट कलर फिल्म। सो विजय आनंद चाहते थे कि हर चीज ना एकदम कमाल हो, पहली कलर फिल्म है उनकी खुद की तो इट हैज टू बी परफेक्ट। तो उसके लिए उन्होंने सिनेमेटोग्राफर फेली मिस्त्री जी को ना अब्रॉड भेजा था, हॉलीवुड भेजा था टू नो द टेक्निक टू शूट द फिल्म इन कलर एंड इट केम आउट सो ब्यूटिफुल। अगर आप रेट्रो फैन हैं और आपने गाइड नहीं देखी तो क्या आप रेट्रो फैन हैं? और पता है आपको ये किसने मुझे इंट्रोड्यूस किया था? इट वॉज माई मॉम हु सेड कि बाकी रेट्रो फिल्म्स के बारे में तुम बहुत बात करती हो, गाइड इज अ मास्टरपीस एंड इट इज। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, गाने सुन करके वापस आओ, अभी तो बहुत सारी बातें करनी है इसी फिल्म की।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
3: बोल रहे
4: हैं। राज जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
3: बढ़िया। कौन सा बोल रहे हैं?
4: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
3: लेकिन है किस लिए ये तो बताइए, कहाँ पे लगाना
4: नहीं
3: है?
4: नहीं, वही मैं, आप जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं, उसमें अब जाहिर सी बात है भाई आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा।
3: तो
4: हाँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी नहीं, पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है,
3: बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ चाहिए हमारे पास? तो
4: नहीं, आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना? ये
3: कॉपी मुझे भी भेजना
4: राजी। एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
3: अपने फ्रेंड्स को, उनको भी भेजूंगा।
4: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। आप थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहे तो?
3: हाँ बिल्कुल बताइए।
4: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वॉन्टेड इस आदमी को, नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें। राज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा। मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया, आपका अब आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप, इसलिए
3: कुकड़ों को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

देव साहब को ये गाना बिल्कुल नहीं पसंद आया था। फिर उन्होंने कहा कि चलो भाई, विजय यानी उनके भाई विजय आनंद, हु वाज एडिटिंग द फिल्म, हु वाज डायरेक्टिंग द फिल्म एज वेल, चलो एक काम करते हैं, गाना बना लो, बाद में देखेंगे रिटेन करना है कि नहीं करना है। बट बाय द टाइम इस गाने की शूट एंड हुई, ही लव्ड द सॉन्ग। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ गाइड फिल्म की बात हो रही है, देव साहब की फिल्म थी ये, एंड इस फिल्म का म्यूजिक देने वाले एस टी बर्मन साहब, गाने लिखने वाले शैलेंद्र जी, और उन्होंने एक गाना लिखा जिसपे वहीदा रहमान ने क्या परफॉर्मेंस दी। द सॉन्ग वॉज, अब ये गाना जब बनने लगा ना तो देव साहब को बिल्कुल नहीं पसंद आया, उनको लगा कि क्यों ही रख रहे हम ये गाना। लेकिन बाय द टाइम ये गाना शूट होकर के एकदम कंक्लूड हो रहा था, ही लव्ड द सॉन्ग, एंड फिर इस गाने को रिटेन किया गया, एंड व्हाट अ प्रिटी प्रिटी सॉन्ग। ये गाना मैं ऑलरेडी आपको सुना चुकी हूँ, तो फिर से नहीं सुनाऊंगी लता जी का ही एक और गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

ये मूवी दो वर्जन्स में शूट हुई थी, एक इंग्लिश वर्जन में इन कोलैबोरेशन विद पर्ल एस बक, डायरेक्टेड बाय टेड डैनियल ल्यूस्की, एंड इट वाज टू इंट्रोड्यूस देव आनंद साहब टू वेस्टर्न ऑडियंस। और हिंदी वर्जन उसके बाद में आया जब देव साहब के छोटे भाई विजय आनंद ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया। पहले ये था कि भाई एक ही वर्जन को वापस शायद डब कर लेंगे, लेकिन नहीं, देव साहब को लगा कि भाई ये तो चीटिंग हो जाएगी हिंदी ऑडियंस के साथ। और फिर हाँ, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्लैशेस भी हुए थे जिसकी वजह से देव साहब ने इसकी बागडोर संभाली, अपने भाई को भी संभलवाई और नवकेतन प्रोडक्शंस के अंडर में ये फिल्म को बनाया गया। टॉकिंग अबाउट द फिल्म ऑफ कोर्स गाइड, पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। वापस आओ, अभी तो हाईवे पे भी जाना है।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर मिर्ची
1: पर उसको साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: हाय माय नेम इज पीटर पार्कर
3: ओके देन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ गई है एंड फॉर गॉड्स सेक प्लीज थिएटर में जाकर ही देखो इज व्हाट जीतू राज विल टेल यू क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं स्पेशली जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी विस्पर्स उनका प्यार उनका गुस्सा वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा एंड फॉर गॉड्स सेक किसी से भी स्टोरी मत सुनो डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी आई जस्ट कांट बिगिन टू टेल यू I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batchelor, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
1: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

पुरानी जीन्स पर श्रेया का जाने का टाइम हो गया है और जब मैं जाती हूँ तो आपको तो पता ही है मैं अपने साथ गाड़ी में आपको बैठा ले जाती हूँ और कहाँ जाते हैं अच्छा आज का हाईवे हिट उन लोगों पे है जो ना जुबान से ज्यादा बात नहीं करते, उनको सामने वाले की नजरों से सब पता चल जाता है। पूरा कमरा भरा हो सकता है, पूरा हॉल भरा हो सकता है लोगों से, लेकिन इनकी बातें नजरों से चल रही होती हैं और शायद कुछ ऐसा कह रही होती हैं।

0: इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि वो डैश है, इम्पोर्टेंट ये है कि वो हमारा बेटा है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम मिर्जापुर द मूवी के ट्रेलर का रिएक्शंस सिर्फ मेरे तरफ से नहीं बट मेरे ऑफिस के जो मेरे दोस्त हैं उनके तरफ से भी लें। हेलो क्रिश एंड गौरांग।
3: भौकाल है श्रुति, भौकाल। ट्रेलर नहीं है वो।
0: अच्छा,
4: मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितनी कसर छोड़ी हुई है ना पिछले एक दो सीजन से, हाँ, वो सब का सब एक मूवी में डाल दिया।
0: और हाँ,
3: मुझे ऐसा लग रहा है ये सीजन 4 है।
0: ओ माय गॉड, सीजन 4 अल्टीमेट लेवल का बन के आया है। वैसे मैंने भी इन लोगों के साथ ये ट्रेलर देखा है एंड भाई साहब, हाँ, ये दोनों मुझे जज करेंगे अगर मैं बोलूंगी कि मैंने मिर्जापुर का सिर्फ सीजन 1 देखा है, वो भी कुछ एपिसोड्स मिस्ड हैं उसमें से। हाँ, ये दोनों नजर गड़ा रहे मेरे ऊपर। बट यार, मूवी देखने के बाद मुझे, मूवी का ट्रेलर देखने के बाद मुझे लगता है कि आज ही तीनों सीजन खत्म करने वाली हूँ मैं।
3: वैसे शुक्र है कि ऐसा सुनने में आया है,
0: हाँ,
3: कि सीरीज का इस मूवी से कोई लेना देना नहीं है।
0: अच्छा,
3: और वहां पे जो बबलू भैया को बदल दिया उससे थोड़ा दर्द हुआ।
0: वैसे अभी जो दूसरे वाले बबलू भैया आए हैं उनका रोल किरदार कैसा लग रहा है आप लोगों को?
3: वायलेंस,
0: वायलेंस फ्रॉम मैक्स।
4: एक टाइमिंग आप देखो, इस समय कौन सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है?
0: कौन?
4: रवि किशन जी।
0: और
4: इसी टाइम पे
0: रवि किशन का जो ट्रेलर में जो पार्ट दिखाया गया है, अरे इसका खून नहीं, हेमोग्लोबिन कम है बे, खून नहीं निकल रहा। और उसके बाद गब गब गब, उफ, गोर है, काफी गोर है ये मूवी।
4: वो एक आदमी एल्गोरिदम सारा समझ गया, कब कौन सी सीरीज में आना है, मूवी में आना है, मीम में आना है, सब समझ गया वो आदमी। सो आई एम मोर एक्साइटेड टू वॉच हिम इन द मूवी।
0: ओ माय गॉड,
3: बाबू भौकाल।
0: तो इसी भौकाल को आगे कंटिन्यू करते हैं अपने शो पे। हाँ, वो बात और है कि वहां मिर्जापुर फील्स नहीं मिलेगी आपको, बट फिल्मी तो जरूर होगी। मिर्ची पे दिस इज मी श्रुति, स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।

0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vieva la burga. Mirci, burga.
2: Hello.
3: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहे हो। मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
2: मोबाइल?
3: ये सर, आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है, इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
2: क्या रिपोर्ट आ गई है?
3: यही कि ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
2: मोबाइल चोरी हो गया?
3: हाँ जी। भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
2: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
3: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
2: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
3: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
2: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
3: भाई मैं कह रहा हूँ, चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
2: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
3: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
2: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
3: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल्स आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
2: हाँ जी सर।
3: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
2: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
4: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर।
2: कुकड़ों को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। कंतारा फेम पैन इंडिया स्टार ऋषभ शेट्टी की अपकमिंग मच अवेटेड पैन इंडिया माइथोलॉजिकल एपिक जय हनुमान की बात करना चाहती हूँ, क्योंकि इसके स्टार कास्ट को ज्वाइन किया है नॉन अदर देन वामिका गब्बी ने। बाकी इस फिल्म की बात करें तो ये डायरेक्टर प्रशांत वर्मा की ब्लॉकबस्टर हनुमान का सीक्वल होने वाली है, जिसके लिए द फैंस आर क्वाइट एक्साइटेड। बाकी की डेट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। बिग स्क्रीन से टीवी स्क्रीन तक का सफर तय कर रहे हैं अजय देवगन। नहीं नहीं, किसी नए एड्स के जरिए नहीं यार, मैं तो क्राइम पेट्रोल 2026 की बात कर रही हूँ, जिसका नया सीजन 31st अगस्त से शुरू होने वाला है। और इस बार अनूप सोनी को रिप्लेस किया है अजय देवगन ने। मुझे तो बस लग रहा है कि वो विक्ट्री वाले साइन के साथ सावधान रहें, सतर्क रहें, ये ना बोलने लगे। इस हफ्ते होने वाला है बॉक्स ऑफिस क्लैश दो फिल्मों के बीच। एक है इमरान हाशमी की आवारापन 2 वर्सेस सनी देओल की बंटवारा 1947। दोनों ही फिल्में 14th अगस्त को रिलीज हो रही हैं और दोनों की ही एडवांस बुकिंग शुरू भी हो चुकी है। बाकी बीइंग अ डाई हार्ड इमरान हाशमी फैन, आई हैव बुक्ड द टिकट्स फॉर आवारापन 2। कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड की हमारे मेमोरीज को खराब ना किया जाए। बस मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ,
0: मैं किसी के दिल से नहीं बट मेरा मिर्ची फिल्मची गेम खेलने की बात कर रही हूँ। हेलो जी, हाय बाबू मोशाय। सो द ड्रिल इज की आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाके अपना नंबर डीएम करना होता है, फिर मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत करती हूँ। तो आज हमारे साथ सबसे पहले इंदौर से जुड़ी है नेहा, क्या तैयार है आप?
3: जी मैम बिल्कुल।
0: ओके, राजा हिंदुस्तानी में कैब ड्राइवर से किसको प्यार होता है?
3: करिश्मा कपूर।
0: बहुत बढ़िया, करिश्मा कपूर की फिल्म जिसमें उनके हस्बैंड का अफेयर होता है?
3: अनिल कपूर है जिसमें। बीवी नंबर वन।
0: हाँ जी, बीवी नंबर वन में उनके हस्बैंड कौन है?
3: सलमान खान।
0: सलमान खान की फिल्म जिसमें वो अपनी ओ ओ जाने जाना को जिंदगी में बुलाते हैं।
3: प्यार किया तो डरना क्या।
0: क्या बात है, प्यार किया तो डरना क्या में सलमान की जाने जाना कौन है?
3: काजोल।
0: हाँ जी, काजोल की फिल्म जिसमें वो एक बिजनेसमैन के बच्चों की केयर टेकर बनी है?
3: किंटू चाचा, चंपक चाचा।
0: क्यूट।
3: राजू चाचा।
0: हाँ जी, राजू चाचा में फेक चाचा कौन बनता है?
3: ये अजय देवगन।
0: हाँ जी, अजय देवगन की फिल्म जिसमें वो अपनी वाइफ को उसके लवर से मिलवाने जाते हैं?
3: हाँ, हम दिल दे चुके सनम।
0: हम दिल दे चुके सनम में निमुड़ा निमुड़ा कौन करता है?
3: ऐश्वर्या राय।
0: ऐश्वर्या राय की फिल्म जिसमें वो एक ग्लैमरस पॉप स्टार बनी है? चलिए कोई बात नहीं, बट यहाँ तक आपने गेम जो पहुँचाया है इट वॉज रियली ट्रिमेंडस। इसी बात पे आपको बनाना चाहूंगी आज की पहली
1: मिर्ची फिल्म ची।
0: तो बस अगर इसके आगे का गेम आप खेलना चाहते हैं देन यू ऑलरेडी नो द ड्रिल। मिर्ची श्रुति के इंस्टा पे अपना नंबर डीएम कीजिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

0: साथ जीतू राज Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man Brand New Day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what Jeetu Raj will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी-छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers उनका प्यार उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: spiders have three life cycles
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: ब्रेकिंग न्यूज मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना
5: हिट गाना

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मैं मिर्ची फिल्म से गेम खेलने की बात कर रही हूँ, जिसकी शुरुआत आज की है क्रिश ने। बट ही गॉट स्टक एट अ पॉइंट। और उसके आगे का गेम खेलने के लिए मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे जुड़े हैं राहुल। तैयार हो आप?
3: रेडी।
0: ओके जी। अभिषेक बच्चन की फिल्म जिसमें वो कौन मैन बने हैं?
3: बंटी और बबली।
0: बंटी और बबली में बबली कौन है?
3: बबली रानी।
0: रानी मुखर्जी की क्रॉस बॉर्डर लव वाली फिल्म जिसमें वो लॉयर बनी है?
3: वीर जारा।
0: यस, वीर जारा में कैदी नंबर 786 को किससे प्यार होता है?
3: प्रीति जिंटा।
0: प्रीति जिंटा की फिल्म जिसमें वो 12:45 बजे आइसक्रीम खाने जाती हैं?
3: सलाम नमस्ते।
0: हाँ जी, सलाम नमस्ते में उनके लिविन पार्टनर कौन है?
3: सैफ अली खान।
0: सैफ अली खान की फिल्म जिसमें वो लंकेश बने हैं?
3: आदि पुरुष।
0: बहुत बढ़िया। आदि पुरुष में सीता कौन है?
3: कृति सैनन।
0: कृति सैनन की फिल्म जिसमें वो लिव इन में रहने के लिए शादीशुदा होने का नाटक करती हैं?
3: लुक्का छुपी।
0: बहुत बढ़िया। लुक्का छुपी में मेल एक्टर कौन है?
3: कार्तिक आर्यन।
0: कार्तिक आर्यन की फिल्म जिसमें वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना चाहते हैं?
3: पति पत्नी और वो।
0: पति पत्नी और वो में उनकी वाइफ कौन है?
3: मैं बताता हूँ, भूमि।
0: भूमि पेडनेकर की डेब्यू फिल्म?
3: दम लगा के आईशा।
0: और आपने भी जो दम लगाया इस गेम में उसके लिए आईशा। तो इसी के साथ राहुल बने हैं हमारे दूसरे
1: मिर्ची फिल्म जी।
0: तो बाबू मोशाय, अगर ये गेम सुन के आपके अंदर का फिल्मची भी जाग रहा है तो उसको सुलाइएगा मत, क्योंकि कल ये गेम वापस आएगा। राइट हियर ऑन मिर्ची, मैं हूँ आपके साथ श्रुति। इट्स हॉट।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते हैं, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: मिस्टर गगन, वेरी गुड इवनिंग, बैंक से बोल रहा हूँ। आपके अकाउंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी थी आपको। आपका अकाउंट नंबर 337103, राइट? वन सेकेंड सर। सर आपके अकाउंट में बैलेंस जो था परसों 1,43,000। वन सेकेंड सर। आज सुबह 95,000 का विड्रॉल किया है आपने?
2: नहीं तो।
1: आपने नहीं किया है?
2: नहीं।
1: तो फिर किसने किया है सर ये? सर ये 95,000 किसने किया है विड्रॉल आपके अकाउंट में से?
2: आप बैठे वहाँ पर या मैं बैठा हूँ?
1: सर आप मुझ पे क्यों चौड़ा हो रहे हैं? हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी सर्विस देखिए कम से कम। मुझे पता चला, मुझे ऐसे पता नहीं क्यों लग रहा था आपके अकाउंट में से 95,000 रुपए निकालनी है। आप कह रहे हैं आपने नहीं निकाला, किसने निकाला, किस पे शक है आपको?
2: मैंने पिछले एक हफ्ते में कोई भी ना कुछ को चेक दिया है, ना मैंने ATM यूज किया है।
1: 95,000 का विड्रॉल नहीं किया आपने अपने बैंक में से?
2: मैंने 2 पैसे निकाले।
1: तो फिर ये किसने निकाला है यार?
2: मैंने कोई पैसा निकाला, ना मैं किसी को चेक दिया। एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल? ओके
1: सर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। जब आप लेने आते हैं हम आपको मना करते हैं, लेके मत जाओ, हम दे देते हैं ना आपको। मुझे क्या पता कौन लेके गया सर?
2: मुझे नोट लेके जा रहा है, उस पर मेरा नाम लिखा है।
1: आपका नाम से क्या होता है यार? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बैंक से 95,000 रुपए निकाल दिए हैं। मुझे नहीं पता आप
2: ठीक बोल रहे हो, वहीं आके बजाऊंगा।
1: आप मुझे क्या बताएं? आप बदतमीजी से बात मत करिए। सर मुझे स्टेटमेंट निकाल दीजिए, बॉस को बाद में लाइन में लगाएगी, स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ मैं। सर ये मैं आपकी स्टेटमेंट मेरे सामने है कंप्यूटर पे। 15 तारीख को आप नहाए थे, आपने मांग निकाली है।
2: क्या
1: मांग निकाली है आपने? आप क्या क्या निकालते रहते हो यार?
2: किससे बात करनी है, किस बैंक से बोल रहे हो तुम?
3: भाई साहब मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, बात आपसे ही करनी थी और बैंक हमारा मिर्ची का है। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है। 95,000 रुपए नहीं निकाले हैं आपके अकाउंट में, 1,42,000 रुपए हैं। और ये जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनती है ना कमलेश, इन्होंने मुझे बताया था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आपको थोड़ा सा झटका देना था।
1: लेकिन सर आपके अकाउंट में ये एक चीज और निकाल दी, आपने भड़ास भी निकाली है, नवेद पे भड़ास निकाल दी आपने।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: इस चीज के बिना टाइगर श्रॉफ का करियर कुछ भी नहीं।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: और वो चीज है एक्शन एक्शन एक्शन। अरे अरे अरे, आप किस एक्शन पे जा रहे हो भाई? मैं तो मार धाड़ वाले एक्शन की बात कर रही हूँ, जिसके बिना सिर्फ टाइगर श्रॉफ का करियर ही नहीं बट हमारा हिंदी सिनेमा भी इनकम्प्लीट सा है। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी एक्शन फिल्मों को डिस्कस कर रही हूँ जिसको आप नेटफ्लिक्स पे आराम से बिंज वॉच कर सकते हो, और इन मूवीज को अच्छी खासी IMDb रेटिंग्स भी मिली है। तो लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट दिस फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर। अब नंबर दो पे बात करते हैं फिल्म मेजर के बारे में, जिसको 8.1 की रेटिंग मिली है ऑन IMDb। वेल, ये फिल्म रिलीज हुई थी इन द ईयर 2022, डायरेक्टेड बाय शशि किरण टिक्का, और इस मूवी में आदि विशेष, शोभिता धूलिपला और प्रकाश राज लीड रोल्स में थे। और ये एक बायोग्राफिकल एक्शन ड्रामा है बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, जो 2008 के मुंबई अटैक्स में शहीद हुए थे। ऑनेस्टली, मेरी माँ ने ये मूवी देख के मुझे रिकमेंड किया था, एंड माइंड यू, मेरी माँ की रिकमेंडेशंस कभी गलत नहीं होती। चलो लिस्ट में आगे बढ़ते हैं, और अब बात करते हैं डेली बेली के बारे में, वन ऑफ माय सुपर डुपर फेवरेट्स येट अगेन। इस मूवी को IMDb पे 7.5 की रेटिंग मिली है, एंड रिलीज्ड इन द ईयर 2011, डायरेक्टेड बाय अभिनय देओ। द स्टोरी फॉलोज थ्री फ्रेंड्स जो दिल्ली में रह रहे हैं, ताशी प्लेड बाय इमरान खान, नितिन प्लेड बाय कुणाल रॉय कपूर, एंड अरूप प्लेड बाय वीर दास। फिर इन तीनों की जिंदगी में एक क्योटिक टर्न आता है जब ताशी की गर्लफ्रेंड दैट इज सोनिया प्लेड बाय शहनाज ट्रेजरी उसको एक पैकेज डिलीवर करने बोलती है टू अ फ्रेंड इन एक्सचेंज ऑफ सम मनी, बट उस पैकेज के साथ झोलझाल हो जाता है जिसका असर इन तीनों की जिंदगी पे भी पड़ता है। मूवी नहीं देखी देन दिस वन इज अ डेफिनेट वॉच। हाँ चलो, अभी बाकी और दो मूवीज की डिस्कशन आगे करेंगे, अभी तो अच्छे वाले गाने सुनेंगे राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: गोली मार भेजे मैं, ये भेजा शोर करता है।

0: लाइट्स कैमरा मारधाड़।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अब यार एक्शन को मारधाड़ नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे। वेल आज पांच के पंच की लिस्ट के थ्रू ना मैं हिंदी सिनेमा की कुछ अमेजिंग एक्शन फिल्मों को डिस्कस कर रही हूँ जो आप इजिली बिंज वॉच कर सकते हैं नेटफ्लिक्स पे, एंड इन मूवीज को बहुत अच्छी IMDb रेटिंग्स भी मिली हुई है। सो लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द फिल्म गैंग्स ऑफ वाजेपुर, नंबर दो पे हमने मेजर डिस्कस किया, नंबर थ्री पे दिल्ली बेली, अब नंबर चार पे बात करते हैं फिल्म एक्शन हीरो के बारे में। हाँ जी, ये फिल्म पर्सनली मुझे काफी पसंद आई थी, डायरेक्टेड बाय अनिरुद्ध अय्यर। ये 2022 में रिलीज हुई थी जिसमें आयुष्मान खुराना और जयदीप अहलावत, ओहो हो हो हो, क्या किलर परफॉर्मेंसेस दी हैं दोनों ने। एक्शन हीरो एक्सप्लोर करता है द थीम्स ऑफ सेलिब्रिटी, फेम एंड द मीडिया। आयुष्मान खुराना एक पॉपुलर एक्शन फिल्म स्टार बने हैं जिसका नाम मानव है, और वो एक पचड़े में पड़ जाते हैं जहां एक लोकल एस्पायरिंग पॉलिटिशियन का एक्सीडेंट हो जाता है व्हाइल शूटिंग फॉर हिज मूवी इन हरियाणा। फिर आगे क्या क्या नहीं होता भाई साहब, किस लेवल पे जाती है ये फिल्म, वो तो आपको देख के पता करना पड़ेगा यार। चलो लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और नंबर पांच पे डिस्कस करते हैं फिल्म मर्द को दर्द नहीं होता के बारे में, डायरेक्टेड बाय वसंत बाला। ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी जिसमें अभिमन्यु दसानी, राधिका मदन और गुलशन देवैया लीड रोल्स में थे, एंड इस फिल्म को 7.3 की IMDb रेटिंग मिली हुई है। वेल, ये कहानी रिवॉल्व करती है सूर्या के इर्द गिर्द, प्लेड बाय अभिमन्यु दसानी, और उसको एक रेयर मेडिकल कंडीशन है कॉल्ड कॉन्जेनिटल इनसेंसिटिविटी टू पेन। अब इस कंडीशन में क्या होता है, उसको चोट तो लगती है बट उसको वो दर्द महसूस नहीं होता, बट इट ऑल्सो कम्स विद इट्स ओन सेट ऑफ चैलेंजेस एंड रिस्क। बाकी गुलशन देवैया एज एन एंटागनिस्ट इज जस्ट किलर, आई टेल यू। सो या ये थी आपके लिए एक्शन मूवीज वाली बिंज वॉच लिस्ट। बाकी मेरी इस लिस्ट में और कोई मूवी ऐड करना चाहो तो कनेक्ट करो यार, MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे फेसबुक या फिर इंस्टा पे। इन द मीन टाइम स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाय, माय नेम इज पीटर पार्कर।
2: ओके देन, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ गई है एंड फॉर गॉड सेक प्लीज थिएटर में जाकर ही देखो इज व्हाट जीतू राज विल टेल यू, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, स्पेशली जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी विस्पर्स, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। एंड फॉर गॉड सेक किसी से भी स्टोरी मत सुनो, डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
3: स्पाइडर्स हैव थ्री लाइफ साइकिल।
2: आई जस्ट कांट बिगिन टू टेल यू। I'll tell you the biggest thing, Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है, क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland, in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है। क्यों, क्या, कैसे, वो जाकर देखो। ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर, अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने। वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है। फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज।
0: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची का।
6: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। कंतारा फेम पैन इंडिया स्टार ऋषभ शेट्टी की अपकमिंग मच अवेटेड पैन इंडिया माइथोलॉजिकल एपिक जय हनुमान की बात करना चाहती हूँ, क्योंकि इसके स्टार कास्ट को ज्वाइन किया है नॉन अदर देन वामिका गब्बी ने। बाकी इस फिल्म की बात करें तो ये डायरेक्टर प्रशांत वर्मा की ब्लॉकबस्टर हनुमान का सीक्वल होने वाली है, जिसके लिए द फैंस आर क्वाइट एक्साइटेड। बाकी की डेट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। बिग स्क्रीन से टीवी स्क्रीन तक का सफर तय कर रहे हैं अजय देवगन। नहीं नहीं, किसी नए एड्स के जरिए नहीं यार, मैं तो क्राइम पेट्रोल 2026 की बात कर रही हूँ, जिसका नया सीजन 31st अगस्त से शुरू होने वाला है। और इस बार अनूप सोनी को रिप्लेस किया है अजय देवगन ने। मुझे तो बस लग रहा है कि वो विक्ट्री वाले साइन के साथ सावधान रहें, सतर्क रहें, ये ना बोलने लगे। इस हफ्ते होने वाला है बॉक्स ऑफिस क्लैश दो फिल्मों के बीच। एक है इमरान हाशमी की आवारापन 2 वर्सेस सनी देओल की बंटवारा 1947। दोनों ही फिल्में 14th अगस्त को रिलीज हो रही हैं और दोनों की ही एडवांस बुकिंग शुरू भी हो चुकी है। बाकी बीइंग अ डाई हार्ड इमरान हाशमी फैन, आई हैव बुक्ड द टिकट्स फॉर आवारापन 2, कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड की हमारे मेमोरीज को खराब ना किया जाए। बस मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

दोस्तों मिडवीक का भी ना एक अजीब ही फेज होता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जब मंडे का शौक निकल जाता है ना और फ्राइडे की एक्साइटमेंट आई नहीं होती है, तब ये जो मिडवीक है ना यानी वेंसडे, ये बिल्कुल मूवी का इंटरवल जैसे लगता है। मतलब स्टोरी तो चल रही है पर क्लाइमैक्स अभी दूर है। और इसी वक्त ना इंसान सबसे ज्यादा चाय पीता है और सबसे ज्यादा बस वीकेंड आ जाए यही बोलता रहता है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि यार इसी मिडवीक में ना सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव आइडियाज भी आते हैं। तो आप भी बताना दोस्तों कि आपका मिडवीक मोटिवेशन क्या है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और मिडवीक में आपके मूड को अप करने के लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Murga, murga. La virtua la murga.
0: Mirchi, murga.
2: Hello.
3: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहे हो, मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
2: मोबाइल?
3: ये सर, आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
2: क्या रिपोर्ट आ गई है?
3: यही कि ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
2: मोबाइल चोरी हो गया?
3: हाँ जी। भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
2: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
3: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
2: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
3: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
2: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
3: भाई मैं कह रहा हूँ, चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
2: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
3: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
2: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
3: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल्स आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
2: हाँ जी सर।
3: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
2: अच्छा, बात करवा दो, कौन है ये?
4: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर, तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर,
2: कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

एक फ्रीडम ऐसी भी जो किसी कैलेंडर पे नहीं लिखी होती। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और वो फ्रीडम है जो मन करे वो पहनने की फ्रीडम। याद है वो टाइम जब फैमिली फंक्शन से पहले मम्मी बोलती थी कि ये पहन लो ये अच्छा लगेगा, और हमारा जवाब होता था नहीं मुझे तो वो पहनना है, क्योंकि अपनी मनपसंद चीज पहनने का भी एक अलग ही मजा होता है, क्योंकि स्टाइल शायद हमारी पर्सनालिटी का सबसे फन एक्सप्रेशन होता है, और हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है, कभी ट्रेडिशनल कभी मॉडर्न कभी सिंपल और कभी फुल मेन कैरेक्टर मोड। और इस आजादी सीजन अपनी स्टाइल को चूज करने की फ्रीडम को इडन रोब भी सेलिब्रेट कर रहा है। अगस्त 6 से 16 तक एंजॉय फ्लैट 35% ऑफ ऑन अपैरल फॉर मेन विमेन एंड किड्स, और फ्लैट 10% ऑफ ऑन ऑल द फ्रेग्रेंसेस। विजिट देयर फ्लैगशिप स्टोर इन नॉर्थ ब्रंसविक न्यू जर्सी या नेशन वाइड शॉप कीजिए एट us.edenrobe.com। Eden Rope, a legacy of style। और दोस्तों अगर आपकी पर्सनालिटी एक बॉलीवुड कैरेक्टर होती तो कौन सी होती जरूर बताना। DM me on Instagram @mirchisiddhi SIDDHI, और फिर एक ऐसा गाना उस मेन कैरेक्टर एनर्जी के नाम, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

डेट नाइट का एक्साइटमेंट ना दोस्तों रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद नहीं, थोड़ा पहले ही शुरू हो जाता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और प्लान चाहे हफ्तों पहले बने हो या शाम को अचानक डिसाइड हुआ हो, रेडी होते वक्त मूड ना ऑटोमेटिकली थोड़ा चेंज हो ही जाता है। फेवरेट आउटफिट, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट, फेवरेट फ्रेग्रेंस और सबसे इम्पॉर्टेंट वो फीलिंग कि आज रूटीन से कुछ अलग होने वाला है। और ऑनेस्टली चाहे सालों पहले की रिलेशनशिप हो या नई नई डेटिंग, कभी कभी ऐसे ही कुछ मोमेंट्स होते हैं जो एक सिंपल से डिनर को भी ना थोड़ा स्पेशल बना देते हैं। तो अगर आजकल आपके कैलेंडर में भी ऐसी कोई इवनिंग आ रही है तो उसे थोड़ा और ड्रेसअप करने का एक बहाना तनिष्क भी दे रहा है। तनिष्क प्रेजेंट्स फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स विद अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, 0% डिडक्शन on exchange of old gold above 18 carat. Terms and conditions apply. So, aaj hi visit kijiye Tanishq store at 1429 Oak Tree Road, Iselin, New Jersey and add the diamond glam to your love story. Usi ke saath mujhe zarur bataiye ki aapka ultimate date night Bollywood song kaun sa hai. DM me on Insta at RJ Mirchi Siddhi, SIDDHI. Aur chaliye meri romantic playlist ka ye agla gana right here on Mirchi. It's hot.

0: साथ जीतूराज only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what जीतूराज will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी-छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers उनका प्यार उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: spiders have three life cycles
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film it's a little different. In fact I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, aka Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

कुछ फिल्मों का नाम सुनते ही उनकी कहानी नहीं उनके एहसास याद आ जाते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी और आज एक ऐसी मूवी की बात हो रही है, आवारापन। बॉलीवुड के उन फिल्म्स में से है जिसे वक्त के साथ लोगों ने और ज़्यादा प्यार दिया। डार्क इमोशंस, सोलफुल म्यूजिक और वो इमरान हाशमी का एरा यार, जब हर फिल्म के गाने ना सीधा प्लेलिस्ट में परमानेंट जगह बना लेते थे, क्योंकि वो गाने सिर्फ हिट्स नहीं होते थे, वो लेट नाइट ड्राइव्स, हेडफोन्स और अपनी ही दुनिया का एक साउंड ट्रैक बन जाते थे। और अब जब अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये आवारापन सुनाई देता है ना, तो लगता है कि जैसे एक नई आवाज़ उन कहानियों को फिर से महसूस करने का मौका दे रही हो। क्योंकि कुछ मेलेडीज़ की खूबसूरती ही यही होती है कि जनरेशंस बदल जाती है लेकिन इमोशंस वही रहती है। वैसे आप भी बताइए दोस्तों कि अगर मैं आवारापन बोलूँ तो सबसे पहले आपको उस फिल्म का कौन सा गाना या मोमेंट याद आता है? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए, एक ऐसी आवाज जो पुरानी यादों को नए अंदाज में छू जाती है, अरिजीत सिंह की आवाज में सुनते हैं ये आवारापन। राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

बचपन में अगर कहीं रेडी होके जाना था तो हमारा काम कितना सिंपल था। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और बहुत ही आसान हो जाता था क्योंकि मम्मी हम सबको रेडी करने में बिजी हो जाती थी। चाहे फेस्टिवल हो, किसी की शादी हो, संडे को रिलेटिव्स के घर जाना हो, मम्मी का एक ही मिशन होता था, पूरी फैमिली टाइम पर तैयार होनी चाहिए। क्योंकि पापा पूछ रहे होते थे कि मेरा कुर्ता कहाँ है, बच्चों को मैचिंग कपड़े पहनाया जा रहा होता था और एंड में मम्मी खुद सबसे लास्ट में तैयार होती थी। तब वो ना बस घर का रूटीन लगता था। लेकिन आज सोचो तो वही छोटा सा केओस कितनी प्यारी सी फैमिली मेमोरी बन गई। और सबसे मजे की बात तो ये है कि अब हम बड़े हो गए लेकिन फैमिली को रेडी करने का सीन ऑलमोस्ट वही है, बस अब कपड़े चूज करने की बारी हमारी। तो इस आजादी सीजन इसी फैमिली वाली फीलिंग को यूएसए में और करीब ला रहा है ईडन रो। August 6 से 16 तक एंजॉय करे फ्लैट 35% ऑफ ऑन अपैरल फॉर मेन विमेन एंड किड्स और फ्लैट 10% ऑफ ऑन फ्रेग्रेंसेस। विजिट देयर फ्लैगशिप स्टोर इन नॉर्थ ब्रंसविक, न्यू जर्सी या नेशन वाइड शॉप कीजिए एट us.edenrope.com। ईडन रोप, अ लीगेसी ऑफ स्टाइल। और दोस्तों, बचपन में घर से निकलते वक्त आपके घर में सबसे लेट तैयार होने वाला इंसान कौन था? डीएम मी ऑन @RJ मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और उसी लेट लतीफ के लिए ये अगला गाना, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vietva la burga. Milci, burga. Aga.
1: हेलो,
2: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: बोल रहे हैं
2: राज जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, कौन सा बोल रहे हैं?
2: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
1: लेकिन है किस लिए, ये तो बताइए, किस लिए, कहाँ पे लगाना
2: नहीं,
1: है?
2: नहीं, वही मैं, आप जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं, हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं उसमें। अब जाहिर सी बात है भाई, आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा।
1: तो,
2: हाँ वही वही वही मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी नहीं, पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे, या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम है आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है,
1: बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ चाहिए हमारे पास?
2: नहीं नहीं, आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना?
1: ये कॉपी मुझे भी भेजना
2: राजी, एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा।
1: मैं अपने फ्रेंड्स से उनको भी भेज,
2: हाँ उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। आप थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहें तो?
1: हाँ बिल्कुल बताइए।
2: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वॉन्टेड इस आदमी को, नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें। राज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा। मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया, आपका आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप, इसलिए
1: कुकड़ों को।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट्स पटाक, मिर्ची फ्रेश माल।
4: लव, लॉस और होप का म्यूजिकल सफर, वे जुनून।

0: गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: दोस्तों अपग्रेडेड रहना भी ना कितना जरूरी है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और अपग्रेड्स तो यार हर जगह जरूरी है, फिर चाहे वो फोन को सिक्योर रखने के लिए एप्स अपग्रेड करना हो, या फिर जॉब में रेलेवेंट रहने के लिए स्किल सेट अपग्रेड करना हो, या फिर अपनी आइडियल लाइफस्टाइल बनाने के लिए करंट लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना हो। बिकॉज विद टाइम गोल्स एंड ड्रीम्स डू चेंज। और ऐसे ही अगर आपके ड्रीम होम को भी अपग्रेड करना हो और आप सोच रहे हो कि क्या सेकेंड लोन पॉसिबल है या फिर क्या रीफाइनेंसिंग पॉसिबल है, तो लैंड मॉर्गेज हैज आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस। इफ यू आर अ फर्स्ट होम बायर और यू आर लुकिंग फॉर रीफाइनेंसिंग और अ सेकेंड लोन, देन वी हैव विद अस आवर फ्रेंड बीश टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। तो चलिए सुनते हैं बीश का क्या कहना है। ओवर टू यू बीश।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: साथ जीतू राज Only on Mirchi, it's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Oh, Kaden, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake, please theater में जाकर ही देखो is what जीतू राज will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake, किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: Spiders have three life cycles.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batchelor, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल ए के पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओह ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

लंबी लंबी ट्रिप्स के बाद अगर कोई एक चीज की क्रेविंग होती है तो वो क्या है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और सबके दिल से एक ही आवाज निकली होगी, घर के खाने की। जी हाँ, सफर चाहे कितना भी अच्छा हो, बाहर कितना भी खा लिया हो, एक पॉइंट के बाद ना दिल बस कुछ सिंपल गर्मा गर्म और अपना सा चाहता है। आपने कभी नोटिस किया है, थकान तो आधी तब उतर जाती है जब किचन से हल्की सी तड़के की खुशबू आती है और फिर याद आता है कि कुछ कंफर्ट फूड ना फैशनेबल नहीं होते, बस फॉरएवर होते हैं। और मेरे लिए उस सुकून का एक ही नाम है, एक गर्मा गर्म बोल ऑफ मूंग दाल की खिचड़ी, हल्की सी घी, साथ में थोड़ा सा अचार, और बस जैसे सफ़र की सारी थकान ही उतर गई हो। बॉडी को ऐसा ईज मिलता है और दिल को भी इतना ज़्यादा सुकून मिलता है विद जस्ट दैट वन बोल ऑफ मूंग दाल की खिचड़ी। इतना सिंपल सा खाना, लेकिन क्या कमाल का कम्फर्ट है, ऑनेस्टली अंडररेटेड। और ऐसे ही घर वाले स्वाद के लिए आज ही ले आइए दीप प्रीमियम इंडियन ओरिजिन मूंग दाल फ्रॉम योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर। दीप, खाओ तो जानो और मुझे बताओ कि आपका कंफर्ट फूड क्या है। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: शाम शानदार लेट्स डू नॉटंकी हैव अ फंकी टाइम
2: लेडीज एंड जेंटलमैन दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बात हो रही है एक ऐसे एल्बम की यार जिसके हर एक गाने ने ना दिल को छू लिया था। जी हाँ, मतलब कभी कोई पल ऐसा आता है जहां वक्त रुक सा जाता है और बस दिल की धड़कनें चल रही होती है। मेट्रो इन दिनों का इन दिनों टाइटल ट्रैक वही गाना है जो यार टर्न पाइक या गार्डन स्टेट पार्कवे के ट्रैफिक में भी ना सुकून दिला दे। तो इस गाने की तैयारी के लिए प्रीतम ने सोहम से बस इतना कहा था कि ऐसा गाना कि लगे कि सूरज की रोशनी ना पर्दों के बीच में से आ रही हो। और आपको पता है ये जो गाना है इसका जो इंट्रो गिटार रिफ है मुंबई के एक बालकनी पे मॉनसून के दौरान रिकॉर्ड हुआ था ताकि रेन की ना थोड़ी नेचुरल सी साउंड आए और एक बहुत ही खूबसूरत सा एम्बियंस बने, और शायद इसीलिए ये गाना इतना एयरी और सूना सूना सा लगता है। वैसे आपके इन दिनों में वो कौन सा मोमेंट है जब जिंदगी थोड़ी रुक सी गई है ऐसा लगता है? डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए इस पल को थोड़ा रोक लेते हैं विद द नेक्स्ट सॉन्ग इन दिनों फ्रॉम मेट्रो इन दिनों राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Mr. Gagan, very good evening. बैंक से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी थी आपको। आपका अकाउंट नंबर 337103 राइट?
1: हाँ।
2: वन सेकंड सर। सर आपके अकाउंट में बैलेंस जो था परसों 1,43,000।
1: हाँ।
2: वन सेकंड सर, आज सुबह 95,000 का विड्रॉल किया है आपने?
1: नहीं तो।
2: आपने नहीं किया है?
1: नहीं।
2: तो फिर किसने किया है सर ये? सर ये 95,000 किसने किया है विड्रॉल आपके अकाउंट में से?
1: आप बैठे वहाँ पर या मैं बैठा हूँ?
2: सर आप मुझ पे क्यों चौड़ा हो रहे हैं? हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी सर्विस देखिए कम से कम। मुझे पता चला, मुझे ऐसी पता नहीं क्यों लग रहा था आपके अकाउंट में से 95,000 रुपए निकालनी है। आप कह रहे हैं आपने नहीं निकाला, किसने निकाला, किस पे शक है आपको?
1: मैंने पिछले एक हफ्ते में कोई भी ना कुछ को चेक दिया है, ना मैंने एटीएम यूज किया है।
2: 95,000 का विड्रॉल नहीं किया आपने अपने बैंक में से?
1: मैंने 2 पैसे निकाले।
2: तो फिर ये किसने निकाला है यार?
1: मैंने कोई पैसा निकाला, ना मैं किसी को चेक दिया। एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल? ओके
2: सर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। जब आप लेने आते हैं हम आपको मना करते हैं, लेके मत जाओ, हम दे देते हैं ना आपको। मुझे क्या पता कौन लेके गया सर?
1: मुझे नोट लेके जा रहा है, उस पर मेरा नाम लिखा है।
2: आपका नाम से क्या होता है यार? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बैंक से 95,000 रुपए निकाल दिए हैं। मुझे नहीं पता आप
1: ठीक बोल रहे हो, वहीं आके बजाऊंगा।
2: आप मुझे क्या बताएं? आप बदतमीजी से बात मत करिए। सर मुझे स्टेटमेंट निकाल दीजिए, बॉस को बाद में लाइन में लगाएगी। स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ मैं सर। ये मैं आपकी स्टेटमेंट मेरे सामने है कंप्यूटर पे। 15 तारीख को आप नहाए थे, आपने मांग निकाली है।
1: क्या
2: मांग निकाली है आपने? आप क्या क्या निकालते रहते हो यार?
1: किससे बात करनी है, किस बैंक से बोल रहे हो तुम?
3: भाई साहब मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, बात आपसे ही करनी थी। और बैंक हमारा मिर्ची का है, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है। 95,000 रुपए नहीं निकाले हैं आपके अकाउंट में, 1,42,000 रुपए हैं। और ये जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनती है ना कमलेश, इन्होंने मुझे बताया था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आपको थोड़ा सा झटका देना था।
2: लेकिन सर आपके अकाउंट में ये एक चीज और निकाल रही है, आपने भड़ास भी निकाली है। नवेद पे भड़ास निकाल दिया आपने।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स

कुछ फोटोज देखते ही सारा सीन फिर से रिप्ले हो जाता है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और कुछ फोटोज देखते ही ना सब कुछ याद आता है कि कौन लेट आया था, किसने सबसे ज्यादा फोटोज खींचे थे और कौन बिना रिहर्सल के डांस फ्लोर का हीरो बन गया था। फिर चाहे वो फोटोज बेस्ट फ्रेंड की शादी के हो, या पहली दिवाली विद फैमिली के हो, या कोई ऐसे फंक्शन की जहाँ सालों बाद सब एक साथ मिले हो। और इसीलिए तो फोटोज में ना सिर्फ चेहरे नहीं होते, पूरा मूड कैप्चर हो जाता है। और जब कोई मोमेंट इतना खास हो तो उस दिन पहनी हुई हर चीज भी उस कहानी का हिस्सा बन जाता है। और शायद इसीलिए इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप का रिश्ता सिर्फ फैशन से ही नहीं, यादों से भी होता है। और अब उसी एहसास को न्यू जर्सी के और भी करीब लाया है फ्रंटियर रास। उनका यूएसए फ्लैगशिप स्टोर अब एडिसन में ओपन है, जहां हैंडलूम साड़ीज, ब्राइडल कोटोर, मेंस वेयर और रेडी टू वेयर के साथ मिलती है 70 ईयर लीगेसी ऑफ इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप। विजिट फ्रंटियर रास एट 1655 ओक ट्री रोड इज इन न्यू जर्सी। और दोस्तों, आपके फोन में वो कौन सी ऐसी फोटो है जो देखते ही आपको पूरा दिन याद आ जाता है? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और साथ में ये भी बताइए कि उस फोटो का परफेक्ट बॉलीवुड बैकग्राउंड सॉन्ग कौन सा था। हो सकता है कि आपकी यादों का वही साउंड ट्रैक मिर्ची पैग लगाना बन जाए। तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Radio Mirchi, New York. It's hot. Mirchi, fresh mal.
1: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है. उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन.

इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शमशादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कुछ बातें होती है ना जो जुबान तक आते आते रुक सी जाती है, पर दिल उन्हें कभी छोड़ नहीं पाता। इन दिनों मेट्रो का बातें कुछ अनकही सी एक ऐसा ही गाना है। ये वो गाना है जहाँ हर नोट ऐसे गिरता है ना कि जैसे लगता है कोई पुरानी डायरी का एक बहुत ही खूबसूरत सा पन्ना खुल गया हो। और एक सुंदर सी कहानी इस गाने से जुड़ी है, मतलब इस गाने में जो हमिंग है, एक बहुत ही हल्की सी हमिंग है जो प्रीतम ने बैकग्राउंड में डाली थी, वो दरअसल इस गाने के कंपोजिशन में कभी थी ही नहीं। वो एक्चुअली ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइजेशन थी और एक पल में ही वो बहुत ही खूबसूरत सी फीलिंग इस गाने में वो जुड़ गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सॉफ्ट हमिंग। और शायद इसीलिए ये गाना सुनते ही ऐसा महसूस होता है जैसे मेमोरीज खुद चलकर अपने पास आ रही हो। और इस गाने में एक बहुत ही खूबसूरत सी नरमी, एक बहुत ही शराफत और एक नज़ाकत है जो इस शाम को भी और खूबसूरत बना दे। तो चलिए इस खूबसूरत शाम को और भी खूबसूरत बनाते हैं इस खूबसूरत गाने के साथ। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो वो कौन सी ऐसी अनकही बात है जो आपके दिल में रह गई है और कभी किसी से आपने कही नहीं। टेल मी ऑन @RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और आज की ये जो शाम है उन्हीं अनकही लम्हों के नाम, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज, only on मिर्ची, it's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Cadence, Spider-Man Brand New Day आ गई है and for God's sake please थिएटर में जाकर ही देखो is what जीतू राज will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, especially जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी विस्पर्स, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा. एंड फॉर गॉड्स सेक किसी से भी स्टोरी मत सुनो, डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स. फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी.
3: स्पाइडर्स हैव थ्री लाइफ साइकल.
2: आई जस्ट कांट बिगिन टू टेल यू. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man Brand New Day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों, क्या, कैसे, वो जाकर देखो. Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने. वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड्स सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज.
0: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची का.
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी कभी ना जिंदगी के सबसे बड़े सेलिब्रेशंस बिल्कुल छोटी छोटी जीतों में छुपे होते हैं। जी हाँ, मतलब शाम के इस वक्त में जब न्यू जर्सी की ट्रेन एकदम स्लो हो जाती है और लोग घर की तरफ बढ़ उठते हैं, कर सलाम इन दिनों मेट्रो का एक परफेक्ट रिमाइंडर लगता है कि लाइफ जितनी भी भाग दौड़ वाली हो उसमें छोटी छोटी विक्ट्रीज का सलाम जरूर बनता है। और इस गाने की मेलेडी एक कैजुअल जैम से निकली थी, मतलब म्यूजिशियंस ने ना टिन क्रेट्स और एम्प्टी कैन से बीट से एक पूरे सिटी हार्टबीट की वाइब क्रिएट की थी। और इसीलिए जब भी ये गाना बजता है ना, लगता है कि यार शहर खुद आपको सलाम कर रहा हो। तो दोस्तों मुझे भी बताइए कि आज की आपकी वो छोटी सी जीत क्या थी, एक ट्रैफिक लाइट का पेशेंस या एक बॉस को दिया हुआ सही जवाब। कुछ भी हो, सेंड मी योर सलाम मोमेंट ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए न्यू जर्सी के स्पिरिट को सलाम करते हुए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कुछ गाने ऐसे होते हैं जो दिल टूटने का दर्द कम तो नहीं करते, बस उस दर्द को ना थोड़ी नजाकत से पकड़ लेते हैं। ओ मेरी जान, की आवाज में मेट्रो का एक ऐसा ही गाना था जिसमें हल्की सी वॉर्म्थ भी है, हल्का सा दर्द भी है और एक सुकून है जो यार शाम को ना बहुत ही खूबसूरत बना देता है। और कहा जाता है कि रिकॉर्डिंग के वक्त स्टूडियो बिल्कुल भी शांत रखा गया था। मतलब वैसे तो यार प्लेबैक सिंगिंग में स्टूडियो जनरली शांति होता है, लेकिन ये स्टूडियो थोड़ा ज़्यादा खास था। नो एक्स्ट्रा लाइट्स, नो बिग सेटअप, बस के हेडफोन्स और एक इमोशनल सा साइलेंस। तभी तो यार शायद इस गाने में एक ऐसी स्टिलनेस है जिससे ना हार्ट ब्रेक भी खूबसूरत सा लगता है। तो अगर इस गाने को आपने दिल से महसूस किया के की आवाज़ में, तो आज की शाम में, न्यू जर्सी की इस खूबसूरत शाम में ये ट्रैक प्ले करते हैं आपके उस खास मेरी जान के लिए। तो चलिए वैसे आप भी बता सकते हो ये गाना आप किसको डेडिकेट करना चाहते हो। टेल मी ऑन इंस्टा मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और ऐसा कौन सा खास एल्बम है जिसका हर एक गाना आपके लिए खूबसूरत है। फिलहाल तो सुनते हैं के की आवाज़ में ओ मेरी जान। राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vidva la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहे हो, मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
2: मोबाइल?
3: ये सर, आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है, इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
2: क्या रिपोर्ट आ गई है?
3: यही क्या, ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
2: मोबाइल चोरी हो गया?
3: हाँ जी। भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
2: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
3: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
2: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
3: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
2: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
3: भाई मैं कह रहा हूँ, चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
2: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
3: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
2: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
3: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
2: हाँ जी सर।
3: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
2: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
4: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर।
2: कुकड़ों को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट विद मिर्ची, फ्रेश माल,
6: एक्सप्लोसिव वाइब और पावर पैक्ड एनर्जी का डोज।

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और हर शहर के बीच में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो यार खास बन जाते हैं। लाइफ इन अ मेट्रो का रिश्ते, वही एक ऐसा गाना है जिसमें यार पूरे मेट्रो सिटी की हार्ट बीट बसी हुई है। मतलब ये मेलेडी एक कैजुअल सी लेट नाइट जैम सी बनी है, बिना स्क्रिप्ट, बिना प्लानिंग, बस दोस्ती और म्यूजिक की वॉर्म्थ। तो शाम के वक्त जब न्यूजर्सी में अपने दोस्तों के साथ बैठो ना, तो बस गिटार या कोई भी एक टिन के डब्बे के साथ भी एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना जब दिल से निकलता है तो वही गाना होता है यार लाइफ इन अ मेट्रो का रिश्ते। और इस गाने ने ना कुछ ऐसी ही फील दी है, मतलब ऐसा गाना है जो अक्सर हम सोचेंगे कि यार दोस्तों के साथ ही गाना चाहिए। तो बस आज लाइफ इन अ मेट्रो का रिश्ते ये गाना रिक्वेस्टेड है बाय आदित्य मदान, जो कि रहते हैं पिस्कैटवे में, अपने दोस्तों के लिए। तो दोस्तों लाइफ इन अ मेट्रो का ऐसा कौन सा गाना है जो आपके लिए खास है, मुझे ज़रूर बताना, वो बजाऊंगी मैं यहाँ। और अगर कोई ऐसा खास एल्बम है जिसका हर एक गाना आपके दिल को छूता है तो वो भी ज़रूर बताना। फिलहाल बजाते हैं आदित्य की रिक्वेस्ट पर रिश्ते फ्रॉम लाइफ इन अ मेट्रो राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। One more.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी कभी अलविदा ना ज्यादा शोर नहीं मचाते, बस एक गीत बनकर दिल में उतर जाते हैं। लाइफ इन अ मेट्रो का अलविदा केके की आवाज में एक ऐसा ही गाना है, क्योंकि उनकी आवाज में एक ऐसी सच्चाई है कि लगता है जैसे उन्होंने अपने दिल के अंदर की खामोशी को गाने में घुमा दिया हो। कहा जाता है कि अलविदा का जब फाइनल टेक हुआ था, वो रात को एक ऐसे लम्हे में रिकॉर्ड हुआ था जब स्टूडियो में ना सिर्फ एक फेंट सी स्मूथ सी लाइट थी, जैसे कि गाना खुद डार्कनेस को भी सूथ कर रहा हो। गाना सुनते ही एक अजीब सी पुरानी याद बहुत ही खामोशी से सामने आ जाती है, एक ऐसा गुड बाय जो कभी बोला या शायद कभी बोला ही ना गया हो। कभी कभी लगता है यार, केके ने जब ये गाना अलविदा गाया था तो शायद उन्होंने भी ये नहीं सोचा होगा कि किसी एक दिन वो भी हमें बिना बोले अलविदा कह जाएंगे। तो चलिए आज केके की ही याद में उन्हीं के एक बहुत ही बड़े फैन रमा, जो कि रहती है एडिसन में, उनकी रिक्वेस्ट पर अलविदा फ्रॉम लाइफ इन अ मेट्रो, ब्यूटिफुल एल्बम विच ऑल द ब्यूटिफुल सॉन्ग्स। तो दोस्तों, आपका भी कोई ऐसा खास एल्बम है जिसका हर एक गाना आपके दिल को छूता है तो मुझे ज़रूर बताना ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल बजाते हैं रमा की रिक्वेस्ट पर अलविदा फ्रॉम लाइफ इन अ मेट्रो, केके की आवाज़ में, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what Jeetu Raj will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers उनका प्यार उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: spiders have free life cycle
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में एक पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात जेकब बैटनो, also MJ अर्थात जेंडाया and Peter Parker यानी टॉम हॉलैंड. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

शाम शाम दालाइक सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज़्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विथ नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा @rjmirchisiddhi और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए फंडे लेकर। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on Radio Mitchy New York.
1: New York.
0: It's hot. It's hot. It's hot.
2: Mitchy.
3: R-O-C-H-I-E.
4: Roshi, Roshi.
2: Mitchy Roshi.
0: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
5: कभी आपके साथ ऐसा हुआ है दैट यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ टू रियली इंटेलिजेंट पीपल जो बहुत ही इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं लेकिन उन्हें एक सिंपल सी बात समझ नहीं आ रही है दैट दे आर मेड फॉर ईच अदर. टेक फॉर इंस्टेंस माय बेस्टी एंड दिस वन गाय हु इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ हर्स जिसे मैं कल पहली बार मिली. तो हम तीनों कैफे में बैठे हुए हैं और वो कहती है यार मैं ना बहुत बोरिंग इंसान हूँ. और वो कहता है एग्जैक्टली प्लस वन मैं भी बहुत बोरिंग इंसान.

वो कहती है मुझे घर पर रहकर खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है. He says, ditto, मुझे भी घर पर रहकर खाना बनाना अच्छा लगता है. She says, अगर मुझे वेकेशन का चांस मिले ना, मैं तो बस बीच पर बैठ के किताबें पढूं. He says, same for me, plus one that too. And I wanted to say कि क्या तुम दोनों अंधे हो या बहरे हो या तुम्हारी IQ सच में जीरो से कम है, क्योंकि तुम्हें दिख नहीं रही हो, made for each other. So I don't...

0: Milci. Iscabana, uscabana, sacabana. Rabana. Burca, burca. La virtua la burca.
1: Milci, burca. Hello. Mr. Gagan, very good evening. बैंक से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी थी आपको। आपका अकाउंट नंबर 337103 राइट?
2: हाँ।
1: वन सेकंड सर। सर आपके अकाउंट में बैलेंस जो था परसों 143,000।
2: हाँ।